0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।

शैलपुत्रय नमः। वंदे वाचित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। आज नवरात्रि का पहला दिन और आज के दिन पूजा होती है मां शैलपुत्री की। एक साल में चार बार नवरात्रि आती है देश भर में, या यूं कहें कि जहां जहां भारतवंशी हैं इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। लेकिन एक चीज जो हर जगह सामान्य होती है वो है मां दुर्गा की पूजा। हर व्यक्ति नवरात्रि के समय में माता को प्रसन्न करने के लिए पूरी श्रद्धा से पूजा करता है और अपने सभी दुखों को दूर करने की प्रार्थना करता है। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रि की इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

सिद्धिदात्राय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज माता का प्रथम दिन है, अर्थात आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज ही के दिन से आगमन भी हो रहा है, तो एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM का ये विशेष कार्यक्रम गगन के साथ। चलिए अब बात करते हैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर नव दुर्गा का श्रृंगार कैसे किया जाता है। पूजा के लिए माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा ली जा सकती है। इसके साथ कुमकुम या बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, गजरा, लाल रंग का जोड़ा, मांग टीका, नथ, कान के झुमके, मंगलसूत्र, बाजूबंद, चूड़ियां, कमरबंद, बिछुआ, पायल इत्यादि से आप माँ का श्रृंगार कर सकते हैं। और इस दिन माँ को क्या चढ़ाएं? इस दिन माँ को सफेद कपड़े और सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद माँ शैलपुत्री के मंत्रों को 108 बार जाप करें और माता की आरती का पाठ करें। माँ को सफेद रंग की चीजें और सफेद रंग की मिठाई प्रिय है। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होंगी और आपकी मुरादें अवश्य पूरी होंगी। एक बार पुनः नवरात्रि के प्रथम पर्व और आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो इस पहले दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

नवरात्र उत्सव के दौरान माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों का सम्मान किया जाता है, जिसे नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का मतलब शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोच्चतम स्थान। जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर होती है, तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। जब आप किसी भी अनुभव या भावनाओं के शिखर तक पहुंचते हैं, तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह चेतना का सर्वोच्चतम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है।

सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अतः आप सभी को सुनो शारदा 90.8 एफएम के परिवार की ओर से इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई, साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं कलश स्थापना की सामग्री के विषय में। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। मान्यता है कि इस कलश में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। कलश स्थापना के लिए थोड़ी सी मिट्टी, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा, नारियल, गंगाजल, लाल रंग का कपड़ा, एक मिट्टी का दीपक, अक्षत, हल्दी, तिलक, पान के पत्ते, जौ, फूल माला, भोग के लिए फल और मिठाई, रंगोली के लिए आटा, मिट्टी की कटोरी के ऊपर रखने के लिए चावल या गेहूं, माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर, चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, लाल चुनरी और पाठ के लिए दुर्गा सप्तशती पुस्तक, दुर्गा चालीसा। इस तरीके से विधि विधान से माँ का ध्यान करते हुए आप माँ को आमंत्रित कर सकते हैं और पूजा का शुभारंभ कर सकते हैं। आपकी पूजा सफल हो, इसी कामना के साथ सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शांती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस प्रकार दुर्गा माता का आप आह्वान करें। ध्यान रखें कि श्लोक पढ़ते वक्त शुद्धता का खास ध्यान रखें। एक बार पुनः नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। माता से यही प्रार्थना है कि आने वाले नवरात्रि आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आइए हम सब मिलकर माता रानी से प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि ये नवरात्रि सुखमय शांतिपूर्वक हम सब के लिए गुजरे। कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ और एक बार पुनः नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता दी।

0: नवरात्र उत्सव के दौरान माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों का सम्मान किया जाता है, जिसे नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का मतलब शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोच्चतम स्थान। जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर होती है, तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। जब आप किसी भी अनुभव या भावनाओं के शिखर तक पहुंचते हैं, तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह चेतना का सर्वोच्चतम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो।

0: उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते यहाँ से वो सारी बातें हम आप तक पहुँचाते हैं जो आप सुनना समझना चाहते हैं कि एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्या काम करता है, किन किन विषयों पर काम करता है। जाहिर सी बात है कि हम हेल्थ पर बात करते हैं, एजुकेशन पर बात करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे, वन्य जीवों के बारे में बात करेंगे, इनकी देखभाल किस तरीके से हम कर रहे हैं या कोई शख्स कैसे कर सकता है। मुझे लगता है कि जो इनके आसपास रहता है वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में। मेरे साथ एक शख्सियत जुड़ रही हैं, उनके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप IIM कलकत्ता के एलुमनाई रह चुके हैं, आपने मास्टर डिग्री कॉमर्स में हासिल की है रांची विश्वविद्यालय से, आपके पास 20 से अधिक वर्षों का अनुभव अलग अलग क्षेत्रों में आपने काम किया है, जैसे कि सोशल मीडिया, सोशल सेक्टर, और आप सिलिकॉन वैली फेलोशिप के विजेता रह चुके हैं। आप इको हीरोज कैंपेन के लिए नॉमिनेट किए जा चुके हैं और आपने कॉरपोरेट करियर को 2010 में अलविदा इसलिए कह दिया था क्योंकि आप अपने पैशन को जीना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं growtrees.com के CEO विक्रांत जी। विक्रांत जी, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी, और इतना बढ़िया तरीके से आपने मेरा ये व्याख्या किया है, मैं बड़ा प्रभावित हूँ इससे।
0: सर, ये बहुत कम है, बहुत कम है। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, एक नेचर लवर से बात कर पा रहा हूँ कि जो प्रकृति के बीच में जाकर नेचर का ख्याल रख रहे हैं, वन्य जीवों का ख्याल रख रहे हैं। तो सर, एक बार पुनः बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है।
1: जी शुक्रिया जी।
0: सर, शुरुआत हम यहाँ से करना चाहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये आप मुझे बताएं, मेरे श्रोताओं को बताएं कि growtrees.com के बारे में, इसके बारे में आप हमें बताएं।
1: जी बिल्कुल करें। सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि growtrees.com जो है एक सोशल इंटरप्राइज है, और ये आज लगभग 12 साल पहले वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून 2010 को हमने चालू किया था। और जब चालू किए थे तो उस समय हमारा एक मकसद था, मकसद ये था कि हमने ये देखा कि उस वक्त, मुझे आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे श्रोता ऐसे भी होंगे जो 80s और 70s के दौर में, 90s के दौर में ग्रीटिंग कार्ड दिया करते होंगे अपने दोस्तों को, अपने चाहने वाले को, जन्मदिन पे, नए साल पे वगैरह। तो हमारे बीच में उस समय आर्ची हॉलमार्क की ग्रीटिंग कार्ड देने की प्रथा थी 80s-90s में उस टाइम पर। और जब ये चालू किया गया इस 2010 में, तो हमने सोचा कि क्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम लाए जहां हर व्यक्ति अपने खास दिनों को जो सेलिब्रेट करने के लिए जो ग्रीटिंग कार्ड या उसके बदले में जो फ्लावर के गुलदस्ते होते हैं, चॉकलेट बॉक्स होते हैं, देते हैं, उसकी जगह में वृक्ष लगा करके, रियल पेड़ लगा कर, पौधे लगा करके उसको डेडिकेट करें गिफ्ट के रूप में।
0: क्या बात,
1: ये आइडिया था जिसको हम बहुत साधारण भाषा में अपने टैगलाइन में बोलते हैं ग्रीट विथ ट्रीज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रीट विथ ट्रीज का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट के साथ हमने चालू किया। और हमने ये देखा कि अधिकांशतः, मतलब मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा इतने साल के, जो हमने कहा 20 साल के करियर में, जो पेड़ से प्यार नहीं करता होगा। लेकिन मैंने जो ये देखा कि चैलेंज क्या है कि लोगों को ये नहीं पता कौन सा पौधा लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है वगैरह वगैरह, है ना। टाइम नहीं है, बिकॉज हर आदमी को लगता है कि कोई और देखभाल कर लेगा, कोई और पेड़ लगा देगा। तो ये चीजों को दूर करने के लिए हमने growtrees.com को चालू किया, और आज 12 साल में हमने एक मकसद को काफी हद तक अचीव करने के लिए आगे बढ़े हैं। अभी तो पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि आज भी लोग जो है हर दिन अपने जन्मदिन पर अपने खास दिन पर वृक्ष लगा कर सेलिब्रेट करने लगे हैं। ऐसा फिलहाल माहौल नहीं बना है, बन जरूर रहा है, बन नहीं गया। तो यही मॉडल है जिस पर हमने काम शुरू किया।
0: जी बहुत खूबसूरत सर, वाकई बहुत अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई। इस बात के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, आपके लिए, आपकी संस्था के लिए बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरी बातों से समझ पा रहे होंगे कि मैं कितना खुश हूँ, एक पर्यावरण प्रेमी से मैं बात कर रहा हूँ जो कि पर्यावरण का ख्याल रख रहे हैं। अदरवाइज होता क्या है कि विक्रांत जी, एक पौधा मैंने लगा दिया, उसको सींच दिया, जब वो वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, उस वट वृक्ष के नीचे एक गर्मी में, एक तपती गर्मी में बंदा आकर रुकता है, अपनी प्यास बुझाता है, छांव में बैठता है, बड़ी खुशी होती है कि मेरा एक पौधा आज बहुत बड़ा रूप उसने ले लिया है। तो सर, अभी आप बातों में हमें बता रहे थे कि लोगों को ये थोड़ी जानकारी नहीं है कि कौन सा पौधा लगाना है, किस मौसम में लगाना है, किस मिट्टी में लगाना है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बता पाएं।
1: जी, हमने इन्हीं सवालों को ध्यान रखते हुए, चैलेंजेस को ध्यान रखते हुए, हमने तय किया कि grotis.com भारत के विभिन्न राज्यों में काम करेगा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति को, पर्यावरण को ध्यान रखते हुए है ना, किसी भी प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करेगा, चालू करेगा। एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए, जैसे अभी जम्मू और कश्मीर में वृक्षारोपण का काम शुरू हो गया, गड्ढे लगना शुरू हो गए है ना
0: जी,
1: वहाँ पौधे अभी लगेंगे, तो वहाँ पर जो हम पौधे लगा रहे हैं जम्मू और कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड एरिया में, जहाँ पर ताचीगाम नेशनल पार्क है, ताचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताचीगाम नेशनल पार्क बोलते हैं, जहाँ पर हंगुल एक इंडेंजर्ड प्रजाति है, हंगुल एक तरह का टियर की तरह होता है, लोगों को समझाने के लिए रॉयल स्टैक जिसको बोलते हैं, तो ये जो प्रजाति है हिरण की तरह देखने वाला, बहुत ही अब दुर्लभ होते जा रहा है, तो वहां पर हम उनके जो हैबिटेट है, जो उनके जंगल है, जिस पौधों को वो ज्यादा पसंद करते हैं, उस तरह के पौधों को हम वहां लगा रहे हैं। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो पौधा जो वहां के लिए लोकल हो, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन में फेवरेबल हो उसके लिए, और वहां के लोकल लोगों के द्वारा मानसून सीजन में ही लगाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि रैंडमली कभी भी लगाते
0: जी
1: हैं
0: जी।
1: हम हमेशा पौधे वहां के
0: मौसम के हिसाब से
1: ध्यान रखते हुए लगाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी जम्मू कश्मीर का, वैसे ही आप एग्जांपल दीजिए कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में हम मैंग्रोव लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव जो होता है, ये समुद्र, बहुत सारे लोगों को मैंग्रोव पता ही नहीं था है ना, और शायद आज ही नहीं पता बहुत लोगों को। मैंग्रोव जो होते हैं खास करके समुद्री एरिया में, जो समुद्र तट से सटे हुए एरिया होते हैं, वहां पर उनके जनजीवन को बहुत प्रभावित करता है। अगर मैंग्रोव रहते हैं तो समझिए कि आपका वहाँ बाढ़ का जो तकलीफ होता है, फ्लड का, सुनामी का,
0: रुक जाता है, आई थिंक
1: वो काफी कम हो जाता है। उसके बाद में आपका जो वृक्ष हम मैंग्रोव लगाते हैं, उस मैंग्रोव के चलते काफी कार्बन जो है अवशोषित होता है, जो समुद्र के इसमें हम उसको अवशोषित कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, जो हम सामान्य बोलचाल बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम को डेवलप करने बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये वृक्षारोपण कब होगा? ये वृक्षारोपण होगा सितंबर अक्टूबर में, बिकॉज सदर्न पार्ट में बारिश लेट से जाती है। तो मैं आपको बेसिकली जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी का एग्जांपल इसलिए दिया कि आपके श्रोता ये समझे कि वृक्षारोपण हम रैंडमली कहीं भी नहीं लगा देते हैं। हम वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के मानसून को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के यू नो जीव जंतु को ध्यान में रखते हुए उन पौधों का सिलेक्शन करते हैं, उसके हिसाब से नर्सरी बनता है और पेड़ लगाते हैं वहाँ पर।
0: नाइस
1: है ना, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक करके पौधे बताऊंगा तो कम से कम सैकड़ों पौधे हैं ऐसे, और आप कंफ्यूज होंगे। तो हम रूल समझ जाइए आप।
0: जी जी, मैं समझ गया।
1: पौधे जैसे दिल्ली के लिए जो बेहतर है, हम दिल्ली में उस वक्त में मानसून जब आएगा तो दिल्ली के हिसाब से पौधे लगाएंगे, है ना
0: जी। आपने इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल का जवाब दे दिया, जो मैं आपसे आगे चलकर बात करने वाला था, कि आपकी संस्था पारिस्थितिक तंत्र में किस तरीके से सामंजस्य बैठाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब हमें मिल गया है। आप उस एरिया की भौगोलिक परिस्थिति को पहले जानते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद वहां जाते हैं, आपकी टीम जाती है और उसके अनुसार, मौसम के अनुसार ही आप वहां पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। तो सर, ये जो सिलसिला है बातों का लगातार जारी है। यहां पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि आप नेचर लवर हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि म्यूजिक आपके आसपास ना रहता। तो कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के आसपास हो, जो आप हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहते हो, वही गाना हम आपके लिए प्ले करेंगे।
1: एक बड़ा अच्छा गाना है, बारिश के लिए होता है, बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा।
0: हर कोई ही सुनना चाहता है, हर कोई ही चाहता है कि बारिश की बूंद तन पर गिरे और इंसान झूम जाए, प्रकृति झूम जाए। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक का आनंद लेते हैं और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा ही, कहीं जाएगा मत। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं growtrees.com के CEO विक्रांत जी, जो कि इस क्षेत्र में काफी अरसे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेचर लवर हैं, प्रकृति के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, वन्य जीवों का भी ख्याल रख रहे होते हैं। तो सर, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया गगन जी और आपके श्रोता जो मुझे अब तक सुन रहे हैं।
0: जी थैंक यू सर। सर मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको कब लगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से काम कर रहे थे, सब कुछ सेटल था, कहीं ना कहीं एक चीज कोई सामने आई होगी या आपने कुछ सोचा होगा, देखा होगा कि मुझे नेचर के लिए काम करना है, वन्य जीवों के लिए काम करना है, वन्य अपराधों को रोकने के लिए काम करना है।
1: मैं आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ जिससे लगे अरे कुछ डिफरेंट है। मेरे लाइफ में बहुत साधारण सी घटना नहीं मुझे प्रभावित किया। वो घटना ये है कि मेरा जन्म जो है एक ऐसे शहर में हुआ था जिसको भारत में ग्रीन सिटी क्लीन सिटी के नाम से जानते हैं। जी जमशेदपुर के नाम से शहर है।
0: जी जी
1: मुझे नहीं पता आप कितने श्रोता जानते होंगे, जमशेदपुर एक शहर है जो झारखंड राज्य में पड़ता है,
0: ठीक
1: है, और वहाँ काफी ग्रीनरी है। अगर कभी आप के श्रोता जमशेदपुर के बारे में जानेंगे लिखेंगे लिखेगा तो मेरे बचपन जो है ना वो आम के पेड़ पे चढ़कर आम तोड़ना, अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ना, नीम के पेड़ पे चढ़ जाना, छुपा छुपी के खेल खेलना, इससे जुड़ा रहा है। और मैं जब पेड़ों के साथ इतना सब खिला हूँ, मेरे घर के आंगन में दो चार पेड़ है, तो जब ये सब चीज देखकर बड़ा हुआ और जब कॉर्पोरेट दुनिया में जब मैं आया और मेरी तबादला मुंबई हो गई है ना, और उसके पहले मैं दिल्ली में भी था इनफैक्ट एक साल लगभग, तो मुझे दिखा गुड़गांव तरफ में या जिस तरफ में डेवलपमेंट के नाम पर कितने
0: जी
1: डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी बात है, बट एट व्हाट कॉस्ट, वो शायद किसी ने सोचा नहीं है। डेवलपमेंट इज गुड, इट इज इम्पॉर्टेंट, उसको हम ना नहीं कह रहे हैं, बट आप किस कीमत पर उस डेवलपमेंट को पा रहे हैं ये परखने की आवश्यकता थी।
0: जी
1: तो जब मुंबई में मैंने देखा कि हर तरफ से कॉन्क्रीट जंगल बने जा रहे हैं, हर दूसरे स्टेशन पर आप जाएंगे वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, यहाँ पर फ्लैट उपलब्ध है, यहाँ ये फ्लैट उपलब्ध है, और मजे की बात ये है कि आज आप देखिए हर फ्लैट हर डेवलपर यही कह रहा है कि इतना खुला स्पेस है, इतना ग्रीनरी है, इतना पेड़ है, उसकी कीमत ले रहे हैं। तो भैया इसी पेड़ को काट कर आपको घर क्यों बना सकते हैं? ये मेरा व्यक्तिगत सवाल होता है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल सही सवाल है आपका।
1: हम इंसान ही हैं जो पहले पेड़ को काटेंगे, फिर घर बनाएंगे, फिर वहाँ पेड़ लगाकर दिखाएंगे कि हम इसे ग्रीन एरिया में रखते हैं तो भैया इसकी कीमत ज्यादा लगेगी।
0: जी जी
1: तो कहीं ना कहीं आप हर आदमी आप देखिएगा इन जनरल, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जमशेदपुर बॉम्बे या दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ,
0: पूरे भारत वर्ष या विदेशों में भी
1: जो भी घर आप देखिए जिसके आस पास वृक्ष होते हैं, हरियाली होती है, ओपन स्पेस होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। तो जब आप इस बात को मानते हैं कि वो वैल्यू बढ़ा रहा है तो फिर ये पेड़ काटना ही क्यों है, है ना?
0: जी जी।
1: और दूसरा तरफ मैंने देखा कि बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि वो गलत करते हैं सही करते हैं, वो उनका अपना नजरिया है देखने का, लेकिन हम अक्सर ये कहते हैं गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया, है ना, गवर्नमेंट ने खराब कर दिया या उस एजेंसी ने खराब कर दिया। हम खुद क्या कर सकते हैं इसकी बात हम नहीं करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: तो हमें वो लगा ठीक है ये शायद वो एक्टिविस्ट का काम है, उनका काम करना है, पॉलिटिशियन का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल मेरी जो जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी है वो क्या है, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी बनती है वो ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ उस पर फोकस करूँ, रेदर देन कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। या तो आप उस तारीख बन जाएगी कि आप उसको रखवा दें, या तो फिर आप भाई आप क्या कर रहे हैं वो देखिए। ये सोच करके हमें लगा कि लेट्स प्लांट ट्रीज, लेट्स प्लांट होप, लेट्स प्लांट फ्यूचर, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि बच्चे लोग बोलते हैं अरे विक्रांत भाई आप 100 पेड़ लगा रहे हैं, वो 100 पेड़ में से शायद 25 पेड़ बड़े होंगे, है ना, कुछ तो पेड़ आधे बीच में मर जाएंगे, उससे बढ़िया है कि आप एक पेड़ जो कट रहने से बचा दीजिए आप। देखिए उस एक पेड़ को कटने से बचाने के लिए मुझे बहुत फाइट करना पड़ेगा तो भी गारंटी नहीं कि बचा पाऊंगा नहीं बचा पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज वो अलग अलग एजेंसी की अपनी भी आवश्यकताएं हैं। लेकिन मैं जो 100 पेड़ लगा रहा हूँ वो 100% पता है कि भैया वो तो मेरे हाथ में है, किसी से परमिशन नहीं चाहिए, मैं खुद जाकर पेड़ लगा सकता हूँ। और मजे की बात है कि वो जो पेड़ लगाऊंगा वो आने वाले 25 पेड़ आपने खुद माना कि जिंदा रहेंगे कुछ साल बाद, 25 पेड़ में कितने फायदे होंगे आप ये सोचिए।
0: बहुत
1: हमारे हाथ में क्या है वो ध्यान दें आप ना।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर।
1: ये सोच करके ही फिर

0: पेड़ कहाँ होते हैं, ये नहीं पता है कि यू नो लास्ट प्लांट कब किए थे वो, तो अच्छा कितनी बड़ी चिंता का विषय है।
1: सर ठीक है, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा बिकॉज क्योंकि मेरा जो सवाल था वो इसी से रिलेटेड था। जाहिर सी बात है कि कोई अगर आपसे जुड़ना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, उसे मालूमात नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि आपने दो बातें उनसे कहीं या पूछा जाना समझा कि आप कितना जानते हैं, नेचर को कितना जानते हैं, तो किस तरीके से फिर किस तरीके से आप आकलन कर पाते हैं कि ये बंदा मेरे साथ जुड़कर नेचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा या फायदेमंद रहेगा, या यूं कहें कि वॉलंटियर आपसे कैसे जुड़े, कुल मिलाकर अगर मैं बात का एक सार जानना चाहूं तो।
0: हमारे पास वॉलंटियर्स की अपॉर्चुनिटीज काफी कम होते हैं, क्यों मैं कम रखता हूं, क्योंकि हमारा ऑफिस टास्क नहीं होता है, ठीक है, और हमारा जो वर्क है वो बहुत ही सीजनल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नर्सरी का जो काम है वो दिसंबर से लेकर के जून तक चलता है, वो तभी ही हो सकता है, जून के बाद नर्सरी नहीं बन सकता है, ठीक है। वैसे ही जो गड्ढे करने का काम है वो जून के पहले होने हैं, है ना। प्लांटेशन का काम जो है वो जुलाई से होने हैं, वो मैं चाहकर भी पहले नहीं कर सकता हूँ। तो ये बहुत सीजनल वर्क है, वॉलंटियर हमेशा आपको सीजनल मिलते जाए इसकी गारंटी नहीं होती है, इसीलिए हम वॉलंटियर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, हम फेलो की तरह लेते लोगों को जो कम से कम एक साल का कमिटमेंट लेकर के आए, वो फेलो की तरह हमारे साथ काम करे, और अगर उसको लगता है कि वो बेहतर कर सकता है और हमें भी लगता है तो हम उनको अपने ही कंपनी में या किसी भी ऐसे इन्वायरमेंटल कंपनी में उनको जॉब ऑफर भी करा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अभी आप रेडियो जॉकी हैं और आप बहुत अच्छा लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, और आपको मन करता है कि नहीं मैं अभी कम्युनिकेशन में ही काम करना चाहता हूं, लेकिन मैं ग्रोथ के साथ या किसी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन साथ जुड़ना चाहता हूं, तो मैं आपके साथ में आपकी जो क्वालिटी है उसको पेड़ के साथ कनेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या पेड़ के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं आप। अगर मान लीजिए कि एक पेड़ है, एक पौधा है जिसको आपने आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले लगाया था, आम का पौधा, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या आप उस आम के पौधे की कहानी उसके जुबानी बता सकते हैं आप?
1: बहुत खूबसूरत, नाइस।
0: अगर आप बता सकते हैं कि हाँ मैं एक आम का पौधा हूँ, मेरा जन्म इस तारीख को हुआ था, फिर जब मैं छोटा था तो एक बार मुझे लू लग गया था तो पानी की आवश्यकता पड़ी, तो फिर मेरे घर वाले ने पानी डाला मुझे ऊपर,
1: जी जी।
0: अगर आप उसकी कहानी सुना पा रहे हैं देन तो मुझे लगेगा कि आपने वो दम है और आप हमारे फेलो बन सकते हैं।
1: नाइस नाइस,
0: एग्जांपल दिया ना आपको।
1: नहीं मैं समझ गया,
0: है ना?
1: जी जी, यानी कि मैं इस बात को ऐसे ले सकता हूँ कि थोड़ा जानना समझना जरूरी है कि उसके अंदर वो लगन है प्रकृति के बारे में, वो कुछ करना चाहता है, नेचर को कुछ देना चाहता है, समय दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, कहीं कोई वृक्ष अगर कट रहा है तो अपना इन्वॉल्वमेंट इतना होना चाहिए कि उसको रोके, दो पौधे लगाए, लोगों को अवेयर करे। बाकी सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सो लिसनर्स मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ जुड़े हुए हैं GrowTrees.com के CEO मिस्टर विक्रांत जी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला लगातार जारी है। विक्रांत जी, कोई और गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो जो सुनाना चाहते हो हमारे लिसनर्स को?
0: बहुत सारे गाना है। एक गाना में जैसे आप थोड़ा ये संगीत जो है आपका इससे जुड़ा हुआ नहीं होगा, मतलब बारिश से जुड़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन मैं एक गाना है कि तुम आए तो गली में चांद निकला।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत
0: है।
1: जी जी,
0: गली में चांद निकला,
1: गली में चांद निकला,
0: आप है गली में चांद निकलवा दे तो बड़ा अच्छा।
1: जरूर जरूर जरूर, देखिए हम दिन में चांद निकलवाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो आइए ये गाना सुनते हैं। सो लिसनर्स आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं GrowTrees.com के CEO विक्रांत जी। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, पेड़ों का हम किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, जो प्रकृति का दोहन हो रहा है, तो ये सच है कि कहीं ना कहीं वातावरण में शुद्ध वायु की कमी है। मैं दिल्ली एनसीआर की अगर बात करूं तो ये सच बात है कि दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता सूचकांक दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, कि जिसकी वजह से यहां लोग रोजगार के लिए आना तक नहीं चाहते, यहां से दूर भागना चाहते हैं। खैर, जब हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में काम कर रहा है, समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, तो वाकई बहुत खुशी होती है। जी हाँ, आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक शख्सियत जुड़ रही है, मिस्टर विक्रांत जी, जो कि growtrees.com के CEO हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी।
0: सर, मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है आपसे बात कर, क्योंकि मैं एक नेचर लवर से बात कर रहा हूं, जो कि लोगों का ख्याल रख रहे हैं, वातावरण का ख्याल रख रहे हैं। अदरवाइज सर, हम देखते हैं कि जो मैंने अभी कहा कि विकास के नाम पर प्रकृति का जो विनाश हो रहा है, वो वाकई कहीं ना कहीं हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे जो मंत्री साहब हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने कुछ रोज पहले कहा था कि हम जब रोड बनाते हैं, बनवाते हैं, तो ठेका देते हैं पौधे लगवाने का। लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे होते, यानी कि वो ठेकेदार काम नहीं कर रहे होते। और उसके बाद उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि अगर पौधे नहीं लगेंगे तो मैं पैसा रोक दूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सच, देखिए सर, हम पैसा ले रहे हैं और उसके बाद वो कार्रवाई नहीं कर रहे, तो फिर जो दूर दराज व्यक्ति है जो अपने फायदे के लिए पेड़ों को काट रहा है, तो इस तरीके से अगर ये सब चलता रहा तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी हम सबके लिए। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में, जब सरकार को एक आगे आकर ये अपनी बात रखनी पड़ती है इस तरीके से?
1: मैं अगर व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मुझे तो अभी आपने जो पहला लाइन बोला ना, वो लाइन ही जचा नहीं। जैसे एग्जांपल तो आपने कहा कि एक नेचर लवर है जो हम सब ने पेड़ लगा, मैं किसी के नहीं लगा रहा, मैं खुद के लगा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के लगा रहा हूँ। सो ये धारणा हटा दीजिए दिमाग से कि कोई किसी के कर रहा है ना। हमारा दिमाग में ये चीज जो है ना, बचपन से घुसाने की आवश्यकता है हर बच्चों को। भाई साहब, जो पेड़ है ना वो बोल नहीं रहा आपसे, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब भी पेड़ नहीं रहेगा आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे।
0: जी जी।
1: बिना, लोग कहते हैं जल ही जीवन है, मेरा तो मानना है जल कब है, जब जंगल है। जंगल है तभी जब आप वृक्ष लगा रहे, तो जंगल है तो जल है, जल है तो जीवन है,
0: क्या
1: जंगल ही जीवन है ना। तो आप जंगल से तो नहीं जा सकते हैं, हम जंगली ही थे, हम जंगल से ही जुड़े हुए हैं। अगर आप सोचेंगे हम जंगल से दूर कर ले अपने आप को, तो आपकी आपकी हैसियत नहीं कि आप रह पाए।
0: जी,
1: ठीक है। आप बिना जंगल के, बिना पेड़ पौधों के आपकी सर्वाइबिलिटी ही नहीं है, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप कोविड के टाइम पर सब लोग ऑक्सीजन के लिए इतने मारा मारी थे, है ना। किसके लिए भाई? ऑक्सीजन के लिए। बड़े बड़े लोगों के फोन आ रहे थे, मुझसे कितने लोगों ने कहा विकास सर आप तो ये मिनिस्टर को जानते हैं, आप उनको जानते, थोड़ा फोन करके ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। मैं कह रहा था ठीक है, उस वक्त की सिचुएशन समझ में आपको अभी भी नहीं आ रही है, ये शर्म और लानत की बात है हमारी इंसानियत पे। भाई साहब, आज वो ऑक्सीजन जो आप खरीद रहे थे वो फ्री में कहीं मिल रहा है आपको। आज सोचिए कि क्या आपके घर के सामने में पेड़ आता है। मैं देखता हूँ, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि घर के सामने अगर एक बड़ा पेड़ आ जाए तो बालकनी से व्यू खत्म हो जाने के लिए लोग पेड़ कटवा देते हैं।
0: जी जी, आप सही कह रहे हैं।
1: आप तो ये जो कह रहे हैं ना कि वो रोड किनारे जो बिल्डर ने नहीं किया वो नहीं किया, तो ये उन बिल्डरों के लिए भी, अगर वो आपके श्रोता है सुन रहे हैं, तो मैं उनको भी अपील करूंगा कि भाई साहब ऐसी मूर्खता ना करें। आपको तो अपने बच्चों को देवर से बताना चाहिए कि भाई आप पेड़ लगाओ तो ही आपका जीवन है। अगर आप पेड़ नहीं लगा रहे हैं, पैसा लेकर के नहीं लगा रहे हैं, तो आप ये
0: गुनाह
1: है। आप के पॉइंट से कहूँ तो पाप है, और साइंस और हमारे समाज की तरफ तो क्रिमिनल ऑफेंस है ये,
0: ठीक
1: है। आप सोचिए कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं विक्रांत जी एक बात बताइए, एक पेड़ में लगा रहा हूँ उस पे कितने लोग निर्भर होते हैं? हमने कहा कभी पेड़ को करीब से जाकर देखिएगा, इतने छोटे छोटे चींटी, इतने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं उसमें, रेप्टाइल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। आप सोचिए कि उतने सारे जान जीवों को, मतलब उतने सारी आत्माओं को, जीव को आपने घर दिया,
0: बेघर कर दिया,
1: उनको रहने का जगह दिया आपने, आश्रय ना दिया। आप सोचिए कि आप एक पेड़ से कितने लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हर आदमी इंसान को ही फायदा पहुंचाए जरूरी नहीं है ना। अभी देखिए, मैं आज ही न्यूज पढ़ रहा था, कर्नाटका गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी बैन किया कि पहले क्या था कि जो जंगलों में जो जीव जंतु मरते थे ना, उनके कारकस को जला दिया जाता था, ठीक है, या दफन कर दिया जाता था, ठीक है, या तो जला दिया था या दफन कर दिया था। अभी अभी मैं आज ही न्यूज पढ़ रहा था, कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला, कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ने, कि अब भविष्य में सिवाय टाइगर के किसी भी जानवर के कार्कस को उसके डेड बॉडी को ना तो दफन किया जाएगा ना जलाया जाएगा। और उसके पीछे जानते हैं लॉजिक क्या है उनका?
0: जी
1: सेम जो मैंने अभी आपको कहा कि अगर मान लीजिए हम उसको छोड़ देते हैं
0: छोटे छोटे जीव,
1: कितने सारे फंगस, कितने सारे दूसरे जानवर जो उसके ऊपर निर्भर होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था कि अगर हाथी का कार्केस पड़ जाता है तो वो पॉर्क्यूपाइन एंड हाइना के लिए वो कैल्शियम का काम करता है,
0: जी।
1: जब वो नोज से खाता है तो उसके बाद में उसके ऊपर कितने सारे फंगस, उसमें जमीन में नाइट्रोजन फिक्सअप करता है। आप समझ रहे हैं कि कुदरत में कितना बढ़िया उसका रोल प्ले किया गया है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ पैसा बचा करके हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, तो नितिन गडकरी जी मुझे तो लगता है कि आपने अगर पैसा दे दिया वही बहुत बात है, अगर दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज तो इसमें आपको इसकी जरूरत नहीं है।
0: जी जी जी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लिए करें, अपने पर्यावरण के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, जैसा कि आपने हमें कहा। जी, और साथ ही साथ आपने हमें वाकई डिटेल में बताया सर कि किस तरीके से जो वन्य जीव हैं, एक अगर कोई वन्य जीव मर जाता है, जिस तरीके से कोर्ट का आपने वर्डिक्ट यहां जिक्र किया कि पहले उसके शव को दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था, लेकिन अब आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि उसके ऊपर भी कई वन्य जीव निर्भर करते हैं। सर, जंगल जब कट रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वन्य जीव भी बेघर हो जाते हैं और वो शहर की तरफ रुख करते हैं, और फिर इंसान अपने आप को बचाने के लिए उन वन्य जीवों का खात्मा कर रहा होता है, वाकई बहुत दुख होता है। तो कहने का आशय मेरा यही कि आप सर, आपकी संस्था और आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और यही जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों के बीच में जब ये बातें जाएंगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्रांति जरूर आएगी। तो मैं ये भी कहूंगा कि आपके जरिए कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो साथ ही साथ मैं जी जी
1: जैसे अभी हमारा भारत में 23 राज्यों में काम चलता है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं काम चलता है तो वहां पर सीड कलेक्शन, नर्सरी के लिए बीज को कलेक्शन करना, नर्सरी बनाना, गड्ढे करना, पौधे लगाना, उसका देखभाल करना, ये सब उसका हिस्सा होता है। इस दरमियान में हम कोशिश करते हैं कि खास करके आदिवासी समुदाय के महिलाओं को अधिकांश रूप से रोजगार मिले। तो आज भारत में हमने लगभग 1 करोड़ से ऊपर पौधे लगा चुके हैं,
0: बहुत,
1: और हमने लाखों कार्य दिवस हमने सृजन किए हैं अभी तक, है ना। इसमें हमने कोशिश किया है खास करके महिलाओं को, जो कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात की है। उसके साथ ही साथ में जब लोगों को लगता है ना जंगल या पेड़ जो है वो ऑब्स्टिकल है, बाधा है उनके डेवलपमेंट में, है ना, इसीलिए तो काट देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये ऑब्स्टिकल नहीं है, ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड का सबसे बेस्ट उपाय है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कि आपने एक महुआ का पेड़ ले लिया, आप एग्जाम्पल महुआ, मैं बता दूं कि ये जो ट्राइबल बेल्ट है आपका झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इस बेल्ट का काफी होता है, ठीक है। और एक एक विशाल पेड़ होता है जिसके जो फूल होते हैं, उस फूल का नॉर्मली जो वहाँ के ट्राइबल्स होते हैं वो प्रयोग करते हैं बहुत सारी चीजों में, महुआ का जूस बनता है, जली बनता है, उसके अचार बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनते हैं, ठीक है। अब सोच, अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बताया था महुआ बोर्ड भी बना रखा उसके लिए। अब एक जो विकसित महुआ का पेड़ है वो साल में लगभग 20 से 25 किलो महुआ का फल देता है, 20 से 25 किलो एक पेड़। अब 20 से 25 किलो अगर महुआ का फल है और उसका बाजार में लोकल मंडी में भाव है 25 रुपए किलो, ठीक है, तो समझिए कि एक पेड़ से लगभग 500 रुपए का उसको फायदा हो गया एक पेड़ से। अब अगर मान लीजिए हमने कहीं 1 लाख पौधे लगाए हैं तो आप सोचिए कि 1 लाख पौधे गुने 500 रुपए कितने हो गए,
0: जी जी,
1: उतना रुपए हर साल उस गांव की आमदनी हो गई, आप समझ रहे हैं ना।
0: जी जी,
1: तो ये जो मैथ है, ये जो इकोनॉमिक्स है, ये संबंध की आवश्यकता है। उस महुआ को पेड़ को अगर काट करके वहां पर आप कुछ और बना दिए होते हैं, बिल्डिंग या कुछ भी, तो उन मजदूरों को एक बार मजदूरी मिलती है, कहानी खत्म।
0: सही बात है।
1: यहाँ से मैंने 1 लाख पौधे लगाए, वो आने वाले 50-60 साल तक उनको पैसा मिलता रहेगा उसमें,
0: जी।
1: ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, इसकी बात मैं करता हूँ। और इससे ज्यादा जो ऑक्सीजन मिलना है या बाकी जो फायदे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी तुलना ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, है ना। अब जैसे मैं बैम्बू लगाता हूँ, है ना, बांस लगाता हूँ नदी के किनारों में ताकि मिट्टी का कटाव बचे, वो एक एक बांस जो है वो 5 से 6 साल बाद में हार्वेस्ट के लायक हो जाता है। अगर मान लीजिए कि उसको हार्वेस्ट कर, एक बांस आप लगाइए, बांस का पौधा कभी आप देखे होंगे वो झुंड में होता है, एक बांस आप लगाएंगे तो कम से कम 50 बांस उसमें निकल जाता है, 50।
0: जी,
1: अब 5 साल के बाद हम उसको बाकी जो पौधे उसमें 50 शूट्स निकले हैं उसको आप हार्वेस्ट करते हैं तो एक की कीमत लगभग 50 रुपए है लोकल मंडी में, ठीक है, बाहर 100 रुपए मिलते हैं। अब मान लीजिए कि हर 5 साल में एक किसान ने एक बांस लगाया और उसे 50 पौधे निकल गए, 5 साल बाद में से उसमें से 40 पौधे को हार्वेस्ट कर सकता है, तो 40 पौधे हार्वेस्ट किया तो 50 रुपए के हिसाब से कितना हो गया आप देख लीजिए।
0: जी जी जी, नाइस नाइस।
1: ऐसे करके हर 5-6 साल में फसल ले सकता है। तो और बांस जो होता है बहुत ज्यादा कार्बन भी अवशोषित करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है।
0: क्या बात है, नाइस नाइस। विक्रांत जी, मेरे पास अगर वो कहते हैं ना कि एक राइट होता, एक अधिकार होता, जिस तरीके से लोग जब कोई सराहनीय कार्य कर रहे होते हैं, मानक की उपाधि दी जाती है, तो निश्चित तौर पर आपने पीएचडी कर रखी है इस क्षेत्र में, तो मैं आज आपको डॉक्टरी की उपाधि दे देता। रियली नाइस सर, रियली नाइस सर। बाकी आप बहुत सकारात्मक काम कर रहे हैं, नेचर के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और ये सच बात है जो आपने उदाहरण हमारे सामने रखा कि जब कोरोना के समय में दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जरूरत थी तब पेड़ पौधों की कीमत हमें समझ आ रही थी। सो लिसनर्स, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर हमने नेचर का ख्याल रखा तो निश्चित तौर पर नेचर हमारा ख्याल रखेगी, अदरवाइज नेचर जब रौद्र रूप अख्तियार कर लेगी तो फिर हमें कोई नहीं बचा पाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा, कोई नहीं बचा पाएगा।
0: लिसनर्स हमारे साथ जुड़े रहे growtrees.com के CEO विक्रांत जी। विक्रांत जी, आपने हमें बहुत समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच गगन, एंड रियली रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर, यू नो, जो आप काम कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने का कम्युनिकेशन के थ्रू, बहुत बढ़िया।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। तो ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। कहने का आशय यही है कि जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, और जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाती है तब जब आप एक पौधा लगाते हैं और उसके बाद वही पौधा वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। मिस्टर विक्रांत को हमने ये कहते हुए सुना कि अक्सर हमने जिंदगी में सुना है लोगों से कि जल ही जीवन है, लेकिन उनका मानना है कि जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तभी जीवन है। तो इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए, नेचर से प्यार करिए, और नेचर बदले में हमें बहुत कुछ देती है, तो इसलिए पौधे जरूर लगाइए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी

0: आपको मौका देता है जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
1: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
1: 90.8 एफएम। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: हाय मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करेनी। जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ब जा मच्छर बन पर भारी।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: सुनो सुनो सुनो, सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज़ वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाए।
3: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
1: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
0: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
1: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
0: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
2: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

सुनो शारदा 90.8 FM। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम
1: सेहत सही लाभ कई,
0: और मैं हूं आपका रेडियो साथी शशि कपूर, और मेरे साथ में है
2: आपका अपना सेहतिया सिंह। भाई शशि कपूर साहब, सबसे पहले आपको प्रणाम नमस्कार, और आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, और आपकी जो बातें हैं, आप जो बताते हैं, उनको भी अपने जीवन में फॉलो करता हूँ, तो इसलिए बहुत अच्छा हूँ।
2: चलिए, ईश्वर आपको खुश रखे, आप स्वस्थ रहें। और जैसे कि आप जानते हैं, आप और हम लेकर आते हैं सेहत की बात, यानी कि सेहत सही लाभ कई का एक विशेष कार्यक्रम।
0: बिल्कुल, और आपकी बातों से हमको लग रहा है कि आज आप विशेष तैयारी करके आए हैं।
2: क्यों ना तैयार रहूं भाई, आज बात ही कुछ ऐसी है।
0: अच्छा, ऐसी क्या बात है
2: भाई? आज बात है हमारे, तुम्हारे, हम सबके प्यारे प्यारे बच्चों की सेहत की बात।
0: ओहो, तो मामला गंभीर है।
2: गंभीर भी है और खुशियों वाला भी।
0: वो कैसे?
2: देखिए साहब, क्योंकि आज हम ऐसी चीज की बात करेंगे जो बीमारी आने का इंतजार नहीं करती।
0: अच्छा, यानी कि बीमारी से बचाने की तैयारी पहले ही कर देती है।
2: बिल्कुल,
0: और वो है टीकाकरण। सियतिया सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
2: लेकिन ऐसा सवाल मत पूछिए जिसका जवाब आपको पहले से पता हो।
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज का जो सवाल है वो ऐसा है जो शायद हमारे बहुत से श्रोताओं के मन में भी होगा।
2: तो जरूर पूछिए, पूछिए पूछिए।
0: बिल्कुल, तो मान लीजिए घर में एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, हंस रहा है और खाना खा रहा है, उसको कोई बीमारी भी नहीं है, तो फिर उसे टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
2: भाई बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने।
0: मतलब मेरा सवाल सही है?
2: कह सकते हैं कि सही पकड़े, बिल्कुल सही सवाल है आपका, और शायद सबसे जरूरी सवालों में से एक भी।
0: तो फिर इस सवाल का जवाब भी बता दीजिए।
2: टीका इसलिए नहीं लगाया जाता है कि बच्चा बीमार है।
0: तो फिर किस लिए लगाया जाता है?
2: ताकि बच्चा कई गंभीर बीमारियों से बच सके।
0: यानी बीमारी आने का इंतजार नहीं करना है?
2: बिल्कुल नहीं।
0: जैसे घर में बारिश से पहले छाता रख लेते हैं।
2: बिल्कुल, बारिश शुरू होने के बाद छाता ढूंढने से अच्छा है कि पहले से तैयार रहें।
0: तो सिहतिया सिंह जी, आपके कहने का मतलब ये है कि टीकाकरण भी तैयारी है?
2: हाँ हाँ, बच्चे की सुरक्षा की तैयारी।
0: तो चलिए इसी बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार है, माता पिता और उनकी छोटी सी बिटिया। बिटिया पूरे घर की जान है। सुबह उठते ही माँ उसके बाल बनाती है, पिता उसे नाश्ता खिलाते हैं, वो आंगन में खेलती है, कभी हंसती है, कभी दौड़ती है, पूरा घर उसकी आवाज से भरा रहता है।
2: भाई ऐसे घर में तो खुशियां ही खुशियां होती हैं कपूर साहब।
0: बिल्कुल होती हैं, लेकिन एक दिन बच्ची को तेज बुखार हो गया। माँ ने सोचा शायद मौसम बदलने की वजह से होगा। अगले दिन बच्ची की तबीयत और खराब हो गई, सांस लेने में परेशानी होने लगी। परिवार डॉक्टर के पास गया, जांच हुई, पता चला कि उसको निमोनिया है।
2: भाई ये तो बहुत चिंता की बात है।
0: हाँ, और डॉक्टर ने एक सवाल पूछा उनसे, बच्ची को टीके लगे थे? माता पिता इस बात को सुनकर के चुप।
2: क्योंकि कई बार हमें बीमारी दिखाई देती है लेकिन उससे बचाव की तैयारी दिखाई बिल्कुल नहीं देती।
0: बिल्कुल सही कहा सियतिया जी आपने। हम अक्सर सोचते हैं बच्चा ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी टीका लगवाने की क्या जल्दी। लेकिन सवाल ये है,
2: जब बीमारी आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, है ना?
0: या उससे पहले ही सुरक्षा की तैयारी कर लेंगे। अब एक और सवाल, टीका आखिर किन बीमारियों से बचाता है?
2: अरे इसकी तो लंबी सूची है भाई।
0: तो चलिए बताइए सूची को, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी जान लें।
2: भाई भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए टीके दिए जाते हैं।
0: तो वो कौन कौन से टीके दिए जाते हैं?
2: जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी यानी पर्टुसिस, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, टीबी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, न्यूमोनिया, रोटा वायरस से होने वाला गंभीर दस्त और जापानी इंसेफलाइटिस।
0: यानी एक दो बीमारी नहीं।
2: भाई कई गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है,
0: और इनमें से कुछ बीमारियों के बारे में तो हम रोजमर्रा में सुनते भी हैं।
2: हाँ?
0: अच्छा, पोलियो का नाम तो हर किसी ने सुना है।
2: और खसरा, काली खांसी, टिटनेस जैसी बीमारियां भी गंभीर हो सकती हैं भाई।
0: मतलब टीका सिर्फ एक छोटी सी सुई नहीं है।
2: बिल्कुल,
0: उसके पीछे बच्चे को गंभीर बीमारियों से बचाने की पूरी तैयारी है। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। मैंने एक लाइन सुनी है, 5 साल 7 बार, ये क्या मामला है सेदिया जी?
2: भाई यही तो याद रखना है कि 5 साल 7 बार।
0: जरा समझाइए इसके बारे में।
2: चलिए हम आपको समझाते हैं और साथ ही साथ अपने श्रोताओं को भी बताते हैं कि बच्चे के जीवन के पहले 5 साल में टीकाकरण के कई जरूरी पड़ाव होते हैं।
0: यानी कि कुल 7 मौके।
2: हाँ हाँ, 5 साल 7 बार को एक आसान याद रखने वाली बात की तरह समझ लीजिए।
0: तो सियतिया जी, एक एक करके याद करते हैं इन टीकों को।
2: भाई पहला जन्म के समय,
0: फिर उसके बाद
2: 1.5 महीने पर,
0: फिर
2: 2.5 महीने पर,
0: उसके बाद
2: 3.5 महीने पर,
0: फिर उसके बाद
2: 9 महीने,
0: फिर उसके बाद
2: 1.5 साल
0: और आखिरी टीका
2: 5 साल।
0: तो फिर से बोलिएगा, 5 साल 7 बार। लेकिन सेहतिया सिंह जी, अगर इनमें से कोई एक मौका छूट गया तो?
2: यही तो सवाल है।
0: तो क्या अब सब खत्म?
2: नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर क्या करना चाहिए?
2: घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए,
0: और
2: नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी से जानकारी लेनी चाहिए और पता करना चाहिए कि छूटा हुआ टीका कब लग सकता है।
0: यानी टीका छूट जाए तो चुप नहीं बैठना।
2: बिल्कुल नहीं बैठना।
0: मान लीजिए माँ को याद नहीं रहा बच्चे का टीका लगना था, उस दिन घर में शादी थी या कोई जरूरी काम था और टीका छूट गया। अब माँ सोचती है चलो अब अगली बार देखेंगे।
2: यही तो सोच बदलनी है भाई।
0: मतलब
2: ही, अगर कोई टीका छूट गया है तो जानकारी लीजिए।
0: लेकिन जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?
2: भाई अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी से,
0: और वहाँ पूछिए अब क्या करना है।
2: बिल्कुल,
0: टीका छूटने का मतलब ये नहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि छूट गया तो छोड़ ही दें।
2: बिल्कुल सही कहा आपने भाई।
0: अब दूसरा सवाल, मान लीजिए टीका लगने की तारीख है लेकिन बच्चा उस दिन बीमार है, अब क्या किया जाए?
2: भाई सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया। ये सवाल बहुत से माता पिता के मन में भी आता है।
0: तो उन माता पिता को क्या करना चाहिए?
2: भाई ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी से बात करके जानकारी लेनी चाहिए।
0: यानी अपने मन से फैसला नहीं करना।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, बिना जानकारी के कोई फैसला नहीं लेना चाहिए।
0: स्वास्थ्य कर्मी से पूछना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और बच्चे के टीकाकरण की जानकारी सही तरीके से लेते रहना चाहिए।
0: तो अब सेहतिया जी, आता है एक और बड़ा सवाल। कुछ माता पिता पूछते हैं सरकारी केंद्र से टीका लगवाएं या प्राइवेट।
2: देखिए साहब, सवाल पूछना गलत नहीं है,
0: लेकिन इसका जवाब?
2: सबसे जरूरी बात है कि बच्चे का टीकाकरण समय पर और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो।
0: यानी सिर्फ इस वजह से टीका ना टाले कि मन में तुलना चल रही है।
2: सही जानकारी लें।
0: और अगर कोई भ्रम है तो?
2: स्वास्थ्य कर्मी से पूछें।
0: मतलब अफवाह से फैसला नहीं,
2: सही जानकारी से फैसला होना चाहिए।
0: अब एक मजेदार सवाल।
2: हाँ हाँ, चटपटा सवाल पूछो। मुझे डर लग रहा है भाई आपके इस मजेदार सवाल से।
0: क्यों?
2: कहीं आप सुई की बात ना कर दें, जो बच्चों को छोड़िए बड़ों को भी सुई से डर लगता है।
0: अरे सेहतिया जी, यही तो बात करनी है।
2: अरे भाई,
0: कुछ लोग कहते हैं सरकारी टीके की सुई में दर्द ज्यादा होता है।
2: अच्छा,
0: और फिर बच्चा रोया तो?
2: माँ परेशान।
0: पिता परेशान
2: और पड़ोसी सलाह देने के लिए तैयार।
0: हमारे समय में तो ऐसा नहीं होता था।
2: ये सलाह मुफ्त में मिलती है,
0: लेकिन टीकाकरण से जुड़े सवालों का जवाब कहाँ से लेना चाहिए?
2: स्वास्थ्य कर्मी से।
0: क्योंकि सुनी सुनाई बात से फैसला करना ठीक नहीं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब आते हैं उस सवाल पर जो माता पिता को सबसे ज्यादा परेशान करता है। टीका लगने के बाद अगर बच्चे को कुछ परेशानी हो तो?
2: ये भी बहुत जरूरी सवाल है भाई।
0: बच्चे को बुखार आ गया तो?
2: घबराने से पहले स्वास्थ्य कर्मी से जानकारी लें।
0: और अगर कोई कहे मेरे पड़ोसी के बच्चे को टीका लगा फिर उसे बुखार हो गया,
2: तो सिर्फ उस बात को सुनकर टीकाकरण रोक देना सही नहीं है।
0: क्यों?
2: क्योंकि हर बच्चे की स्थिति के बारे में सही जानकारी स्वास्थ्य कर्मी ही दे सकता है।
0: मतलब किसी एक व्यक्ति का अनुभव सुनकर पूरे कार्यक्रम के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा।
0: अगर कोई चिंता है तो?
2: स्वास्थ्य कर्मी से पूछिए।
0: अगर कुछ समझ नहीं आता तो?
2: फिर पूछिए।
0: और फिर भी समझ ना आए तो?
2: तो भैया पूछते रहिए, क्योंकि हमारे एक कहावत तो आपने सुनी होगी, पूछंता मूर्ख नहीं कहलाता।
0: बिल्कुल, वाह क्या बात कही है आपने। तो अगर कोई परेशानी हो तो पूछ लेना चाहिए।
2: बच्चे की सेहत का सवाल है, सवाल पूछने में शर्म कैसी भैया।
0: तो सिहतिया सिंह जी, चलिए अब सुनते हैं हमारे समुदाय के लोगों से।
3: पहले हमें लगता था कि टीका तभी जरूरी है जब बच्चा बीमार पड़े। फिर स्वास्थ्य कर्मी ने समझाया कि टीका बीमारी से पहले बचाव के लिए है। अब हम बच्चे का टीका कब लगाना है इसकी तारीख याद करने की कोशिश करते हैं।
0: बहुत अच्छी बात।
2: क्योंकि सही जानकारी से कई बार हमारी सोच बदलती है,
0: और सोच बदलती है तो व्यवहार भी बदल सकता है। सियतिया सिंह जी, एक और सवाल।
2: हाँ हाँ जरूर पूछिए साहब।
0: क्या हर माता पिता को अपने बच्चे के सारे टीके की तारीख याद रहती है?
2: आपको रहती है?
0: मैं सवाल पूछ रहा हूँ।
2: मतलब आपको नहीं रहती?
0: अरे
2: सच बताइए।
0: चलो मान लिया, हर तारीख याद रखना आसान नहीं है।
2: इसीलिए टीकाकरण की जानकारी संभाल कर रखना बहुत जरूरी है भाई,
0: और स्वास्थ्य कर्मी से पूछते रहना चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने।
0: मतलब मुझे याद है कहने से ज्यादा जरूरी है कि वास्तव में जानकारी सही हो।
2: बिल्कुल।
0: चलो सियतिया सिंह जी, अब आपकी परीक्षा लेते हैं।
2: मेरी परीक्षा? भाई मैं तो कुछ याद कर आया ही नहीं।
0: तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टीका बीमारी होने के बाद ही जरूरी है?
2: गलत।
0: क्यों?
2: टीका बीमारी से बचाव के लिए पहले से सुरक्षा की तैयारी है।
0: बहुत खूब। अगला सवाल, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है इसके लिए टीके की जरूरत नहीं?
2: गलत।
0: क्यों?
2: टीकाकरण का उद्देश्य ही गंभीर बीमारियों से बचाव करना है।
0: अच्छा, एक टीका छूट गया तो अब कुछ नहीं हो सकता?
2: गलत।
0: तो?
2: नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी से जानकारी लें।
0: अच्छा, अगला मेरा सवाल है, बच्चे को उस दिन कोई बीमारी है तो अपने मन में तय कर लें कि टीका नहीं लगवाना।
2: रुके,
0: क्या हुआ?
2: ऐसे मामले में स्वास्थ्य कर्मी से जानकारी लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
2: अब मेरी बारी सवाल पूछने की।
0: चलिए आपकी बारी है तो सवाल पूछिए।
2: 5 साल 7 बार किससे जुड़ा हुआ है?
0: बिल्कुल, ये जुड़ा हुआ है टीकाकरण के जरूरी पड़ावों से।
2: और पहला?
0: जन्म के समय।
2: फिर?
0: 1.5 महीना।
2: फिर?
0: 2.5 महीना।
2: और फिर?
0: 3.5 महीना।
2: और फिर?
0: 9 महीना।
2: चलिए फिर लगा देते। फिर?
0: 1.5 साल।
2: और फिर?
0: 5 साल 7 बार। अब एक और बात पर थोड़ा गंभीर होते हैं। कई बार माता पिता सोचते हैं एक टीका नहीं लगा तो क्या फर्क पड़ेगा,
2: लेकिन सवाल ये है कि हम अपने बच्चे की सुरक्षा में कोई जरूरी कड़ी क्यों छोड़ें?
0: सही कहा आपने,
2: टीकाकरण एक पूरी प्रक्रिया है दोस्तों,
0: और इसीलिए हर जरूरी पड़ाव पर ध्यान देना जरूरी है।
2: हाँ हाँ।
0: मतलब ये नहीं कि अरे 2 लग गए हैं अब बाकी बाद में।
2: सही जानकारी रखिए कि कौन सा टीका कब होना है,
0: और अगर कोई छूट जाए
2: तो स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क कीजिए।
0: सियतिया सिंह जी, हमारे देश में एक चीज बहुत प्रसिद्ध है।
2: क्या?
0: पड़ोसी की सलाह।
2: अरे हाँ, ये तो सही बात कही आपने।
0: अक्सर हम सुनते हैं हमारे बच्चे को तो ये टीका नहीं लगा था,
2: हमने तो कभी नहीं लगवाया,
0: हमारे समय में कौन सा टीका लगता था,
2: और फिर कोई कहेगा अरे रहने दो बच्चा तो ठीक है।
0: तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए?
2: भाई पड़ोसी का सम्मान अपनी जगह, लेकिन बच्चे की सेहत के मामले में सही जानकारी स्वास्थ्य कर्मी से लें।
0: यानी सलाह सुन सकते हैं
2: लेकिन फैसला सही जानकारी के आधार पर करें।
0: और अब समय है हमारे विशेषज्ञों की बात सुनने का,
2: क्योंकि सवाल हमारे हैं और जवाब विशेषज्ञों के पास।
0: तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में हैं जिला प्रतिरक्षा अधिकारी डॉक्टर आर के श्रीवा जी। उनसे हम जानेंगे टीकाकरण के बारे में, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि टीकाकरण से हमको क्या लाभ होता है, बच्चों को क्या लाभ होता है, क्यों कराना जरूरी है, और खास करके नियमित रूप से। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब के साथ में। डॉक्टर आर के श्रीवा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
0: सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मैं टीकाकरण के बारे में, आखिर टीकाकरण क्या है और इसका क्या लाभ होता है, और अपने जिले गौतम बुद्ध नगर की हम बात करें तो किस तरह से ये कार्यक्रम चलता है?
4: देखिए, जो नियमित टीकाकरण है उसे हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP के नाम से जानते हैं, और सभी जिलों में या यूं कहें कि पूरे भारत के अंदर ये टीकाकरण का अभियान बुधवार और शनिवार को नियमित स्थानों पर हमारी NM के द्वारा आशा और आंगनवाड़ी के सहयोग से संचालित किया जाता है, जिसमें जितने भी हमारे बच्चे होते हैं उनको उम्र के हिसाब से हमारी आशा बहन जी और आंगनवाड़ी बहन बुला करके लाती हैं, जिनका शेड्यूल होता है कि भाई इस दिन या इस माह इस बच्चे को ये टीका लगना है। उन सब की एक ड्यू लिस्ट बनाई जाती है, जो कि आजकल हमारे UWIN पोर्टल है उससे भी वो डाउनलोड हो जाती है, और आशा आंगनवाड़ी और ANM तीनों अपनी अलग अलग ड्यू लिस्ट बनाती हैं, जिसके हिसाब से वो बच्चों को बुलाकर लाती हैं। प्रत्येक सत्र पर लगभग 15 से 25 टीके लगाए जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो ये तो रही बात कि किस तरह से अपने जिले में टीकाकरण किया जाता है, अब बात करते हैं लाभ की। तो जो टीकाकरण होता है किन किन बीमारियों से बचाता है?
4: देखिए, जो टीकाकरण अभियान है इसमें हमारे जिले के अंदर 11 बीमारियों से बचाव के लिए ये टीकाकरण किया जाता है, और टीका से मतलब ये है कि हम अगर किसी बच्चे को ये टीका लगा दें तो उस बीमारी से बचने की एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर बन जाती हैं, और वो बीमारी बच्चे को नहीं होती है, या अगर होती भी है तो वो उस इंटेंसिटी से नहीं होती कि जिस बच्चे को एक वो टीका नहीं लगा है उसके कंपैरिजन में।
0: तो आपने बताया कि निकट भविष्य में बच्चों को होने वाली बीमारियों से टीकाकरण बचाता है, तो कुछ बीमारियों के नाम भी आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन सी बीमारियां हैं वो?
4: देखिए, हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो टीका लगता है वो BCG, OPV, IPV, हेपेटाइटिस बी। जैसे ही नवजात शिशु पैदा होता है तो उसे उसी समय पर पोलियो की डोज पिलाई जाती है, उसी समय हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाया जाता है, और उसी समय एक विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि हमें उस समय तक यह नहीं पता होता है कि बच्चे को कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम है कि नहीं है, उससे उसका बचाव होता है।

0: उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक स्लोगन भी है, 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार, तो इसका क्या उद्देश्य है?
1: देखिए 5 साल 7 बार टीका ना छूटे एक भी बार, 5 साल मतलब यह है कि किसी भी बच्चे के लिए 5 साल तक ये टीके हमारे सभी कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसलिए ये 5 साल हमने लिया है। और 7 बार किसी भी बच्चे को 7 बार हमारी एनएम बहन जी के पास आना होता है, 7 ही बार में ये पूरा टीकाकरण कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ये स्लोगन दिया गया है कि 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
0: बिल्कुल, यानी कि एएनएम बहन जी के द्वारा जो टीकाकरण किया जाता है 5 साल में 7 बार आपको आना होता है और 7 बार में ये जो टीकाकरण है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सर कि अगर मान लीजिए किसी वजह से कोई टीका छूट जाता है या कहीं पर कोई बच्चा चला जाता है या किसी शादी है कोई और बात है, तो उस समय क्या करना चाहिए?
1: देखिए अगर कोई टीका छूट जाता है तो ऐसा प्रावधान है, या ये कहें कि कुछ टीके हमारे 5 साल तक, जैसे किसी बच्चे को डीपीटी का टीका नहीं लगा या पेंटा छूट गया तो हम उसको बाद में लगा सकते हैं, जैसे बीसीजी है तो हमारा बीसीजी वैसे तो जितनी जल्दी बच्चे को लग जाएगा उतना अच्छा है, लेकिन 1 साल तक हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसी प्रकार से मिजल्स है, मिजल्स हमारा 1 साल तक 9 से 12 महीने तक लग जाना चाहिए, अगर नहीं लगता है तो उसको हम बाद में भी लगा सकते हैं, और बूस्टर डोज हमारी 16 से 24 महीने तक दी जाती है।
0: तो ये तो बात रही कि किस तरह से जो टीकाकरण है वो छूट जाता है तो कैसे उसकी भरपाई की जा सकती है। तो अब बात कर लेते हैं जैसे टीका लगने के बाद कभी कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाता है, सूजन हो जाती है, बुखार आ गया है, ऐसी स्थिति में क्या करना आवश्यक है, किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है?
1: जैसे टीका लगाते हैं तो हमारी बहन जी लाभार्थी के पेरेंट्स को, माता पिता जो भी टीका लगवाने आते हैं उन्हें बताया जाता है कि भाई इससे ये बुखार आएगा या लाल होने की संभावना है या दर्द होगा या अन्य जो भी दिक्कतें आती हैं उसके बारे में समझाया जाता है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि भाई ऐसी दिक्कत आती है तो आप तुरंत मेरे पास लाएं या ये होता है तो आप तुरंत बड़े अस्पताल में लेकर के जाएं। और उसके साथ साथ जो संबंधित दिक्कत होने वाली होती है उसके लिए वो दवाई भी उपलब्ध कराती है, जिसको हम कहते हैं AEFI, जिसके लिए एक जिला स्तर पे एक टीम बनी हुई है, कमेटी, वो उसका आकलन करती है पूरे जिले का। इसी प्रकार से एक ब्लॉक लेवल पे बनी हुई है जो आकलन करती है कि हमारे ब्लॉक में या अर्बन UPSC के अंतर्गत कितने ऐसे केस आए जिनको कोई छोटी या बड़ी दिक्कत आई।
0: बिल्कुल सर, और जो भी टीकाकरण का कार्यक्रम होता है तो सारे टीके निःशुल्क लगते हैं?
1: देखिये हमारे सरकारी संस्थानों पर सभी जगह सभी टीके बिल्कुल निःशुल्क लगाए जाते हैं और उसके लिए सारी सामग्री हमारे जिला स्तर से ही दी जाती है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
0: साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि टीकाकरण के प्रति लोग जागरूक रहें तो सुनो शारदा 90.8 FM जो कि एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो किस तरह से इसमें आपकी हेल्प कर सकता है, और साथ ही साथ आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी लोग अपने बच्चों को टीकाकरण उनका नहीं करवाते हैं?
1: देखिए मैं तो यही कहूंगा कि शारदा रेडियो की द्वारा जितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है हम उनके बहुत आभारी हैं, और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जन जन तक ये बात पहुंचती है, क्योंकि ये सभी लोग सुनते हैं, सबसे सस्ता एक साधन है और सबसे मनोरंजक है। और मैं इसके द्वारा यही कहना चाहूँगा कि सभी को, माता पिताओं को अपने बच्चों को उम्र के हिसाब से जो भी टीके लगते हैं उनको लगवाना चाहिए, अगर कोई छूट जाए उसके बावजूद भी हमारी एएनएम बहन जी से मिलना चाहिए, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ब्लॉक लेवल के जो हमारे इंचार्जेस हैं डॉक्टर्स हैं उनसे मिलें, अगर फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो वो जिला स्तर पर आकर के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से मिल सकते हैं। इसके अलावा भी आप UIN पे भी सर्च कर सकते हैं और पोर्टल और भी हैं जिसके द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं।
0: UIN पोर्टल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे?
1: देखिए UIN पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसके ऊपर जो भी टीके लगाए जाते हैं वो सभी साथ साथ लगते ही पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाते हैं, जिससे कि लाभार्थी को ये फायदा रहता है कि वो कभी भी उस टीकाकरण के डिटेल को अपना कि मेरा टीका कब लगा, कब छूटा वो पूरी जानकारी मिल जाती है। दूसरा, हम लोगों के लिए भी ये हर स्तर पे, जैसा कि

0: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ABDM एक योजना चलाई हुई है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। उसके अंतर्गत जीरो फाइलिंग, पूरा ई फाइलिंग से अभी हमारे जो है कार्य शुरू होना है। उसके तहत ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है कि कोई भी कहीं भी लिखने की आवश्यकता ना पड़े और सारी चीजें ऑनलाइन हो जाए, जिससे कि अधिकारियों को हर लेवल पे सुविधा रहे, कभी भी उसको निकाल के हम देख सकते हैं। अगर किसी को कभी भी कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो वो उसको मिल जाए, लेकिन उसके लिए उनको मोबाइल नंबर या उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यूविन का, वो उसकी आवश्यकता पड़ेगी।
1: बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर आरके सिरोहा जी आपने टीकाकरण के बारे में, यूविन पोर्टल के बारे में। और ज़रूर हमारे सुनने वाले समुदाय के लोग हैं जागरूक रहेंगे और अपने बच्चों का टीकाकरण करवाएंगे। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीता सिंह जी, आपने सुना,
2: सवाल हो तो पूछिए।
1: बिल्कुल, तो पूछते हैं आपसे सवाल। टीके छूटे तो जानकारी लीजिए
2: और टीकाकरण को टालते मत रहिए।
1: चलिए एक और स्थिति सोचते हैं।
2: हाँ?
1: सुबह का समय है।
2: हाँ?
1: माँ बच्चे को तैयार कर रही है।
2: हाँ?
1: पिता काम पर जाने वाले हैं। अचानक माँ कहती है, आज तो बच्चे को टीका लगना था।
2: और पिता कहेंगे, अरे आज मुझे तो याद ही नहीं था।
1: फिर
2: आज काम बहुत है, कल चलते हैं।
1: और कल?
2: कल भी काम है।
1: और फिर?
2: भाई अगले हफ्ते बात करते हैं।
1: और देखते देखते
2: टीका छूट गया।
1: तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करें?
2: भाई टीकाकरण की जानकारी समय से रखें।
1: और अगर फिर भी छूट गया तो?
2: तो स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी से संपर्क करें।
1: मतलब अगले हफ्ते को कभी मत बनने दीजिए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खूब बात कही।
1: एक और बात, कई बार माता पिता के मन में सवाल होता है, इतने सारे टीके क्यों?
2: सवाल होना स्वाभाविक है भाई।
1: बच्चा रोएगा,
2: पूछिए।
1: दर्द होगा,
2: पूछिए।
1: टीका छूट गया तो?
2: फिर पूछिए।
1: बच्चा उस दिन बीमार है तो?
2: पूछते रहिए साहब।
1: कौन सा टीका कब,
2: ये भी सब पूछिए।
1: मतलब सवाल जितने चाहे पूछिए,
2: लेकिन जवाब सही जगह से हमेशा लीजिए,
1: यानी डर या अफवाह से नहीं,
2: सही जानकारी से।
1: अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, टीकाकरण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है?
2: नहीं।
1: सिर्फ पिता की?
2: नहीं।
1: सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी की?
2: नहीं।
1: तो
2: भाई बच्चे की सेहत में परिवार की भूमिका है
1: और समुदाय की भी।
2: अगर आपके आसपास कोई परिवार टीकाकरण को लेकर भ्रम में है
1: तो क्या करें?
2: उसे डांटे नहीं,
1: तो
2: उसे सही जानकारी लेने के लिए प्रेरित करें।
1: स्वास्थ्य कर्मी से बात करने को कहें।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक परिवार की जानकारी
2: दूसरे परिवार के काम भी आ सकती है।
1: तो सीहतिया सिंह जी, आज की पूरी बातचीत को अगर सिर्फ तीन बातों में समेटना हो तो?
2: बहुत ही आसान है भाई।
1: पहली,
2: टीका बीमारी होने के बाद नहीं, बीमारी से बचाव के लिए है।
1: दूसरी,
2: बच्चे को टीकाकरण समय पर करवाना बहुत जरूरी है।
1: और तीसरी और आखिरी बात,
2: अगर कोई टीका छूट जाए या कोई सवाल हो तो घबराए नहीं, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी आप जरूर जाएं।
1: बहुत बढ़िया। और अब चलते चलते आखिरी राउंड,
2: तो चलिए।
1: बच्चा बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है,
2: फिर भी टीकाकरण बहुत जरूरी है।
1: टीका छूट गया,
2: स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी से जानकारी लें।
1: बच्चे के टीके की तारीख याद नहीं,
2: जानकारी लें।
1: पड़ोसी ने कुछ और कहा,
2: स्वास्थ्य कर्मी से सही जानकारी लें।
1: बच्चा उस दिन बीमार है,
2: स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लें।
1: टीका लगने को लेकर मन में डर है,
2: सवाल पूछे, सही जानकारी लें।
1: और पाँच साल सात बार, छूटे ना टीका एक भी बार। तो दोस्तों आज की बात यहीं खत्म करते हैं,
2: लेकिन बच्चों के टीकाकरण की बात यहीं खत्म नहीं होती।
1: अपने बच्चों के टीकाकरण की जानकारी रखिए,
2: कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य कर्मी से पूछिए,
1: कोई टीका छूट गया हो तो जानकारी लीजिए,
2: और किसी भ्रम या अफवाह को अपने बच्चे की सुरक्षा के बीच मत आने दीजिए,
1: क्योंकि बच्चे की मुस्कान
2: हम सबकी जिम्मेदारी।
1: और याद रखिए, पाँच साल सात बार, छूटे ना टीका एक भी बार। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में मैं था आपका रेडियो दोस्त शशि कपूर,
2: और भाई मैं था आपका अपना सेहतिया सिंह।
1: तो दोनों मिलते हैं अगली कड़ी में सेहत सही लाभ कई के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए,
2: सुरक्षित रहिए
1: और सेहत की सही जानकारी लेते रहिए। सेहत सही लाभ कई।

0: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
3: आए पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
2: वो
3: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
4: क्या क्या हुआ बेटिया?
5: डॉक्टर साहब,
6: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
4: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
3: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
5: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा।
6: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए। अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
7: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ओले ओले ओले ओ शोला। हेलो कौन?
1: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
2: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
1: जल्द मिलते हैं।
0: हेलो हेलो हेलो,
3: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
4: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
3: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए, कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है, इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान, कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।

नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैल पुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैल पुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का कार्यक्रम खेत खलियान में, और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। आप सभी को मेरा नमस्कार। किसान मित्रों, हम आपसे ये कहते ही हैं कि आप खेती के साथ साथ अन्य काम भी कीजिए ताकि आपको फायदा ज़्यादा हो, और कभी खेती में कुछ नुकसान हो जाता है तो बैलेंस है वो बना रहे, और खेती में उन तकनीकों का इस्तेमाल करें जिससे कि खेती में लागत कम हो और आपको फायदा ज़्यादा हो। तो किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम आप तक जो जानकारी पहुंचाएंगे उनमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि केंचुआ खाद का क्या महत्व है, जिसको कि वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इस खाद का क्या महत्व है, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इससे फायदे हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि आप किसान भाई रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी मृदा है, खेत की मिट्टी है, उसका स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। तो एक तो बात यह है कि आप अंधाधुंध खादों का इस्तेमाल ना करें, अपने जो खेत की मिट्टी है, मृदा है, उसकी जांच कराएं, और जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार ही खाद का प्रबंधन करें ताकि जो मृदा है वो ठीक रहेगी। जब मृदा ठीक रहेगी तो उत्पादन खेत से हमको अच्छा मिलेगा। तो हम मिट्टी की जांच के बारे में भी आज के कार्यक्रम में बात करेंगे, और कार्यक्रम के आखिर में हम बात करेंगे आयुष्मान भारत और ग्रामीण स्वास्थ्य की। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो फिर आप खेती कैसे कर पाएंगे। तो स्वस्थ शरीर का होना भी बहुत आवश्यक है, तभी आप अच्छे से खेती कर पाएंगे और देश की उन्नति में भागीदारी दे पाएंगे। इन सब जानकारियों के साथ साथ होगा गीत संगीत, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केंचुआ खाद की, यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट है उसका क्या महत्व है। किसान मित्रों, केंचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की सेहत और पौधों के विकास के लिए एक बेहतरीन जैविक खाद है। इसे केंचुओं द्वारा कचरे और गोबर को गलाकर बनाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और कई सूक्ष्म पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं जो आपकी फसलों की पैदावार को बढ़ाते हैं। अब वो इस केंचुआ की खाद से मिट्टी को क्या फायदे होते हैं तो वो भी आपको हम बताते हैं। तो ये जो केंचुआ की खाद है वो मिट्टी को पोली और उपजाऊ बनाती है, हवा का संचार बढ़ाती है जिसकी वजह से पौधों की जड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, साथ ही पौधों में पानी को रोकने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि जल धारण की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा जो लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं वो भी बढ़ते हैं। अब इसके बाद आती है कि जो फसल की पैदावार है उस पर क्या असर होता है। तो केंचुआ खाद से पौधों को आसानी से पोषण मिलता है, पौधों में बीमारियां और कीट कम लगते हैं, और जो फल फूल अनाज है उनकी जो गुणवत्ता है वो सुधरती है, यानी कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलता है। इसके अलावा रासायनिक खादों पर जो खर्चा ज़्यादा होता है ना वो कम हो जाता है। तो इसमें दो तरह से लाभ हमारे किसान भाई ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट से। एक तो आप इसका प्लांट लगा करके खुद के लिए भी खाद का निर्माण कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, साथ ही साथ बेचने के लिए, ताकि जो अन्य किसान भाई हैं उनको भी ज़रूरत पड़ेगी अपने खेतों में जैविक खाद की, तो उनके लिए भी आप सप्लाई कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, इस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट से दो तरह से लाभ ले सकते हैं, यानी कि आप अपने खेतों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं अन्य किसान भाइयों के लिए। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना वर्मी कंपोस्ट के लाभ के बारे में, महत्व के बारे में, और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं एक गीत।

किसान मित्रों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेत खलियान गीत संगीत के साथ। और अभी आपने जाना कि जो वर्मी कंपोस्ट है उसका क्या लाभ होता है और कैसे आप उससे फायदा ले सकते हैं। और अब बात आती है मिट्टी की जांच की, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जो मिट्टी में है किस तत्व की कमी है या किस तत्व की अधिकता है, तो आप खाद का प्रबंधन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। खेत से बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे कि आपका जो उत्पादन है वो बढ़े और साथ ही लागत में कमी आए। किसान मित्रों, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न उत्पादन की मांग को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसके लिए मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आपको पता ही है कि पौधे के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अधिक पैदावार और लाभ लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना आवश्यक है। अब उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना आवश्यक है, तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारी जो मिट्टी है, मृदा है, उसमें किस पोषक तत्व की कमी है या किसकी अधिकता है। तो आप मिट्टी का नमूना लेकर के उसको नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर आप ले जाइएगा। और इसके अलावा आप अपने निकटतम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में नमूना ले जाकर दे सकते हैं, जहां पर इसकी जो जांच है वो मुफ्त में की जाती है। अगर कुछ पैसे भी कहीं लिए जाते होंगे तो इतने ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत ही कम शुल्क लगता है, तो आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। और जब मिट्टी की जांच की रिपोर्ट आ जाए उसी के अनुसार आप अपने खेतों में उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें। और अब किसान मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हो जाए कुछ गीत संगीत, तो आइए सुनते हैं एक और ये मधुर गीत।

तो किसान मित्रों, अभी आप इस मधुर गीत का आनंद ले रहे थे और जरूर आपको अच्छा लग रहा होगा। और वैसे भी जब जानकारी आपको दी जाती है, कोई भी जानकारी हो, बीच बीच में गीत संगीत होता रहता है, तो कहीं ना कहीं जो जानकारी है उसको सुनने का जो आनंद है वो बढ़ जाता है। और इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आपको अपने खेत की मिट्टी की जाँच है वो जरूर करवानी चाहिए, चाहे आप खेतों में खेती करते हैं या जो शहरों में लोग रहते हैं वो अपने किचन गार्डनिंग करते हैं, तो उनको भी मिट्टी की जांच करवाना जरूरी है ताकि वो भी उसी के अनुसार प्रबंधन करें उर्वरकों का। क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी जो फसल की उत्पादन क्षमता है वो बढ़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि समय समय पर मिट्टी की जाँच करवाई जाए। किसान मित्रों, जिस तरह से स्वस्थ शरीर के लिए सही खान पान का होना बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। खेती से बेहतर पैदावार और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी का परीक्षण यानी कि जांच करवाना बहुत बहुत जरूरी है। किसान मित्रों, किसी भी फसल से उन्नत पैदावार के लिए ये जरूरी है कि उस फसल को किस प्रकार की भूमि में उगाया जा रहा है और उस भूमि में किस प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जो कि आपको मिट्टी की जांच से पता चल जाता है। तो ये आप जान गए होंगे किसान मित्रों कि खेत की मिट्टी की जांच कराना कितना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा समय भी बचता है, हमारी खेती में जो लागत है वो कम आती है। और जब हम बिना सोचे समझे कोई भी फसल करते हैं तो आपको पता ही है कि फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा होता है। तो आप अपनी जो खेत की मृदा है उसकी जांच कराने के बाद ही फसल करें ताकि आपको फायदा ज़्यादा हो। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना मृदा परीक्षण के महत्व के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

किसान मित्रों, हमारे देश में 65% से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, इसलिए सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए दो बड़े कदम उठाए हैं। पहला है आयुष्मान भारत योजना और दूसरा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आयुष्मान भारत योजना ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल दी है और इसके तहत ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है और गांव के स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक बनाकर लोगों के घर के पास ही जांच और दवाइयां दी जाती हैं। अब आपको बता दें कि जो आयुष्मान भारत है उसके दो मुख्य भाग हैं। पहला है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पर आपको 12 तरह की जो जांचें हैं वो बिल्कुल मुफ्त में की जाती हैं, और इसके अलावा जो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और भी अन्य तरह की बीमारियां हैं उनकी दवाइयां दी जाती हैं, और यहां पर गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी किया जाता है, बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, और जो आम बीमारियां हैं उनकी मुफ्त में दवा दी जाती है। तो आपको जब भी कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो आप नज़दीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाकर के दवाई ले सकते हैं, वहाँ पर अपना इलाज करवा सकते हैं। और जो भी जाँचें होती हैं, चाहे वो डेंगू की जांच हो, मलेरिया की जांच हो, ब्लड की जांच हो, शुगर की जांच, वो सब निशुल्क यहाँ पर की जाती हैं। और किसान मित्रों, आयुष्मान भारत का जो दूसरा भाग है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो ग्रामीण इलाकों के पात्र परिवारों को बड़े अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का कैशलेस यानी कि बिना पैसे दिए इलाज देती है, और इसके लिए आपको बनवाना पड़ता है आयुष्मान कार्ड। तो आप चेक करा लीजिए आपके पास जो भी जन सुविधा केंद्र है कि आपका जो सूची में नाम है या नहीं है, आप पात्र हैं या नहीं हैं। अगर आप पात्र हैं तो आप ये आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, और इस आयुष्मान कार्ड का उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आपको कोई ऐसी बड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो जाए जिसका कि इलाज आपको बड़े अस्पतालों में करवाना है, तब आप इस आयुष्मान कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। और आपको इसके साथ ये भी बता दें कि आप ग्रामीण बहन भाई देश के सूचीबद्ध किसी भी बड़े सरकारी या निजी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ये बहुत ही खूबसूरत गाना, जिसमें बात हो रही थी कि जिस तरह से नदियां चलती हैं, धाराएं चलती रहती हैं, हमको भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए आगे बढ़ने का। क्षेत्र चाहे कोई सा भी हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिलहाल हम भी आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम खेत खलियान को यहीं पर संपन्न करते हैं। फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: में प्रथम स्वरूप हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैल पुत्री कहा जाता है। ये शक्ति स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी। सोचा प्यास लगी होगी, मैं भाग की दादी के पास गया। बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया। बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: बेटा दाई माँ से बात कर लेना, पर सब का समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है।
1: दाई क्यों माँ, गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे।
0: पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं, अब ये अस्पताल अस्पताल।
1: पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा।
3: अरे आशा बहू आओ आओ।
2: सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है। अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है, जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है। प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो। खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा।
2: जे हुई ना बात, तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 MHz, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: गई थी देखने,
1: बहुत सुंदर है।
2: नहीं जी, हम तो गए ही नहीं थे। कैसी है?
0: हम तो देखे हैं, हमारी बगल वाली चाची है ना, उन्हीं के साथ गए थे।
2: अच्छा, हमको भी चलो ना, हमको देखना।
0: अपनी छोटकी बहनिया को ले लीजिए, जाइए देख लीजिएगा।
2: छोटकी बहनिया नहीं जाएगी ना जी, तुम नहीं जानती हो।
0: काहे नहीं
2: चलो ना?
3: बक जी, काहे लड़ रहे हो तुम लोग?
2: ये हमको लेके नहीं जा रही है, ये देख चुकी है दुल्हन आई है उनके घर ना।
3: अरे हमको भी देखना है, चलोगी?
2: चलो चला जाए।
0: किसी के साथ वह चले जा, हम दूर बढ़ जाएंगे तो क्या कहेंगे?
2: तो क्या हो जाएगा, एक बार और देख लेना ना, चलो हमारे साथ।
3: बक जी, दुल्हनिया क्या सोचेगी?
2: कुछ नहीं सोचेगी, वो हम लोगों को थोड़ी देखेगी, हम लोग उसको देखेंगे तो शर्माएगी।
0: इसी के साथ चले जाइए ना।
2: तो मतलब नहीं जाओगी?
0: चलिए चलिए, लेके चलते हैं।
2: हाँ चलो चलो जी, तुम भी चलो।
4: अरे रूही।
0: हाँ।
4: अरे ये सारा सामान तो हटा दो, अपनी भाभी को आराम तो करने दो।
0: हाँ हाँ ठीक है, करते हैं।
4: सुबह से बेचारी थक गई है, लोग आके देख के जा रहे हैं।
0: हाँ सही कहती हैं आप।
4: हाँ हाँ सामान हटाओ तो। ए बहुरिया, तनी आराम कर लो।
2: जी माँ जी।
4: रूही।
0: हाँ।
4: भाभी को पानी दो तो।
0: अभी लावत है।
4: कुछ खाओगी?
2: नहीं माँ जी, अभी कुछ नहीं खाऊंगी।
4: अरे ए रूही, कहाँ रह गई?
0: हाँ माँ, आई।
4: अरे आओ नहीं, अपने भैया को तो बोल दो कि आके आराम कर ले।
0: हाँ भेज देती हूँ। भैया भैया भैया।
5: हाँ।
0: अरे वो अम्मा बुला रही है अंदर। वहाँ
5: अम्मा को कहो 2 मिनट इंतजार करे, हम दोस्तों को भेज के आ रहे हैं अभी।
0: हाँ ठीक है, बोलत है, आइए जल्दी से।
5: अच्छा चलो तुम लोग, आई गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अम्मा बुला रही है हमको, तुम उसे भेंट करते हम कल सुबह। अम्मा,
4: तुमको अपने दोस्तों से अभी भी फुर्सत नहीं मिल रहा है का?
5: ओ नहीं अम्मा, वो कुछ बतिया रहे थे लोग, गए सब। बताई।
4: अच्छा एक बात बताओ, ये सोची भी हो कि बबुरिया को कह दोगे तुम?
5: हाँ हाँ काहे नहीं, यहाँ रखे हैं, अब भेंट होगा तो दे देंगे हम।
4: भेंट का होगा? कल भेंट करोगे का? अरे जाओ, बबुरिया आराम कर रही है, उससे कुछ बात कर लो। बेचारी को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या बात करे, वो हम लोगों से शर्मा रही होगी, तुमको तो बताएगी ना।
5: अम्मा वो बच्ची थोड़ी ना है, तो उसको कोई जरूरत बुझाएगा तो बताएगी आपसे।
4: चलो ठीक है, लेकिन तुम जाओ ना एक बार।
5: ठीक है जा रहे हैं, वो बाहर टेंट वाला आया है, तनी हिसाब करके फिर जा रहे हैं हम।
4: अच्छा ठीक है, चले जाना।
6: वैसे रूम में काफी अड़सा है, ठीक हो जाएगा, अभी सामान उमान है, रखा उखा है यहाँ पे। खैर वैसे तुम्हारा नाम क्या है नंदनी?
7: घर तेरा हो गया।
8: काहे कड़वा पे नहीं देखे थे क्या?
6: ना ही देखे रहे पर कोनो बात करने का। खैर मजा किया हो, बढ़िया है, खूब बनेगी हमारी।
7: आज से मेरा घर तेरा हो गया।
6: वैसे जब हम पहली बार तुम्हारा फोटो देखे थे तो तुम हमको बड़ा नीक लगी थी, एकदम ऐश्वर्या राय। तुम देखी थी हमारा फोटो शादी से पहले?
8: हाँ हम भी देखे थे, अम्मा के अलमारी से निकाल के, एकदम शाहिद कपूर लगे थे।
6: बहुत मजाक करती हो तुम भी। अच्छा ये देखो तुम्हारे लिए हम का लेके आए हैं। तुम सुबह से भूखी होगी ना, बगल में हलवाई खाना बना रहे हैं, हम उसे चुरा के तुम्हारे लिए कचौड़ी आई गुलाब जामुन लेके आए हैं।
8: लेकिन हम तो खा चुके हैं, अम्मा हमको खिला चुकी हैं।
6: खा चुकी हो
8: जी?
6: चलो बढ़िया है। अच्छा सुनो एक और चीज लाए थे तुम्हारे लिए, आँख बंद करो दिखाएं।
8: अच्छा लेकिन आँख बंद कर लेंगे तो देखेंगे कैसे?
6: अरे हाँ हाँ हाँ, इंटेलिजेंट हो, ब्यूटी विथ ब्रेन, सही है सही है। अच्छा ठीक है फिर आँख बंद करो, और जब हम कहेंगे खोलने के लिए तब खोलना अपना आँख।
8: अच्छा ठीक है।
6: एक दो, देखो चीटिंग ना करो तुम अब, नहीं तो हम नहीं दिखाएंगे फिर। आँख बंद करो, एक

0: अब अपनी आँख खोलो, ये देखो हम तुम्हारे लिए गजरा लेके आए हैं।
1: अरे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे पास तो है।
0: अच्छा, तुम्हारे पास है? हम बहुत सोचे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने से पहले कि काले को समझ में नहीं आ रहा था। तभी मोबाइल पर इंटरनेट पे देखे हम कि गजरा औरतों को बहुत अच्छा लगता है, तो हम ले लिए तुम्हारे लिए। खैर कोई ना, कल लगा लेना।
1: अरे नहीं नहीं, हमने जो लगाया है ना, वो तो ऐसे ही मुरझा गया है, अब आपका लगा लेंगे।
0: हाँ।

0: किलो लगा लो।
1: सुनिए ना, आप ही लगा दीजिए ना।
0: अब हमको तो नहीं आता है लगाना। अब
1: अरे कोई बात नहीं, हम बता देते हैं।
0: ये भी ठीक है।

0: अरे बहुरिया, तैयार हो गई कि नहीं?
1: जी माँ जी, हो गई।
0: आओ ना बेटा, बाहर आ जाओ, कुछ लोग मिलने आए हैं तुमसे। और बबुआ को भी बोल देना कि वो भी आ जाए।
1: माँ जी, वो तो सुबह सुबह ही चले गए हैं।
0: कहाँ चला गया?
1: कुछ बता के नहीं गए हैं।
0: बिना बताए चला गया? इतनी सुबह सुबह कहाँ गया होगा। अच्छा ठीक है, छोड़ो, तुम आ जाओ, लेकिन एक बार फोन करके पता कर लेना कि कहाँ है वो।
1: जी।
2: The person you are trying to call is currently busy.
1: माँ जी, उनका फोन तो बिजी बता रहा है।
0: एक बार और ही करके देख लो।
1: जी माँ जी, देखते हैं।
3: हेलो।
4: हेलो।
3: अजी कब तक आएंगे? सुबह से शाम हो गई।
4: शाम हो गई?
3: हाँ जी।
4: अच्छा,
3: हम सुबह से कुछ खाए नहीं है। हम सोच रहे थे कि आप आते तो आपके साथ ही खाते।
4: आ रहे हैं, थोड़ी देर में हम आ रहे हैं।
3: हाँ जल्दी आइए।
4: रखो तुम।
3: जी।
0: बात हुई बबुआ से बहुरिया?
1: हाँ माँ जी।
0: क्या बोला है?
1: अभी कुछ देर में आते हैं।
0: वैसे वो है कहाँ आज?
1: वो अपने दोस्तों के साथ है, थोड़ा सा कुछ पार्टी वार्टी कर रहे हैं।
0: अच्छा, तू पार्टी कर रहा है?
1: जी, कह रहे थे कि शादी का पार्टी मांग रहे थे लोग।
0: अच्छा चलो ठीक है, चलो तुम भी खाना खा लो, तुम कुछ खा ही नहीं हो सुबह से।
1: माँ जी आप लोग खा लीजिए, वो आएंगे तो हम उनके साथ खा लेंगे।
0: अरे वो पता नहीं कब तक आएगा, चलो ना खा लो।
1: नहीं नहीं माँ जी, आप लोग खा लीजिए, हम उनके साथ ही खाएंगे।
0: अच्छा चलो ठीक है, एक बार और फोन करके पूछ लेना कि कब तक आ रहा है। ठीक है?
1: ठीक है माँ।

0: नंदनी
1: जी आई। अरे ये क्या हुआ आपको? अरे
2: सब कोई सो गए ना?
1: हाँ सब लोग सो गए, लेकिन आपको क्या हुआ?
2: कुछ नहीं, वो कपार हमारा भारी हो रखा है।
1: आपने पी रखी है?
2: नहीं पागल हो, हम कहाँ पीते हैं, हमने नहीं पी रखी है।
1: लेकिन हमको तो महक रहा है।
2: पागल होगा लोका, तुम्हारा नाक खराब होगा फिर।
1: नहीं आपने पी रखी है।
2: चुप रहो, नहीं पिया मैंने।
1: माँ जी को बुला, खाइए मेरी कसम।
2: दोस्तों के साथ इतना होता रहता है। अच्छा हटो तुम सामने से, मेरे लिए चाय बना दो एक कप।
1: हम नहीं बनाएंगे, आप क्यों पी के आए हैं?
3: अरे चुपचाप से चाय बना के लाओ मेरे लिए।
1: चाय नहीं, आप नींबू पानी पीजिए, नशा उतर जाएगा आपका।
3: चुप, जब हमने तुमको बोल रखा है चाय बनाने के लिए तो क्या नींबू पानी लगा रखी हो तुम? जितना बोला जाए उतना ही करो, आगे आगे करने की जरूरत नहीं है तुमको। बीवी हो इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहो वो करोगी तुम। चलो जाओ यहाँ से, हम ठीक है ऐसे ही। कौन है?
4: तुम्हारी अम्मा है बबुआ, तनी दरवाजा तो खोलो।
1: आप रुकिए हम खोलते हैं।
4: अरे ये क्या हुआ बहुरिया, तुम रो काहे रही हो?
1: नहीं अम्मा, वो घर की याद आ रही थी थोड़ी सी।
4: अरे बेटा हम लोग है ना, काहे रो रही हो, काहे चिंता कर रही हो? और ये क्या हुआ, तुम्हारा गाल इतना लाल काहे दिख रहा है, ये उंगलियों के निशान का हुआ?
1: नहीं।

0: अम्मा, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
1: अच्छा ठीक है, तुम जाओ आराम करो।
2: अच्छा सुनो ना बहू, हम सोच रहे थे कि थोड़ा मेरा बैग वो पैक कर देती तो हम जाके इसके मामा के यहाँ घूम आते।
0: कब जाएंगी माँ?
2: अच्छा कल सुबह हम पारितोष को बोलते हैं कि कल सुबह हमको छोड़ दे।
0: ठीक है अम्मा, तो हम आपका बैग अभी पैक कर देते हैं।
2: ठीक है बहू, ठीक है।
3: अरे ये क्या कर रही हो तुम?
0: वो अम्मा जाने वाली है ना अपने मायके, तो उनका बैग पैक कर रहे थे।
3: अच्छा सुनो, तनिक यहाँ आओ।
0: जी कहिए।
3: बैठो। नाराज हो हमसे?
0: नहीं, नाराज क्यों होंगे?
3: नहीं, वो हम तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़ दिए ना, हमको नहीं करना चाहिए थे। अब वैसे भी हम होश में नहीं थे, इस वजह से ऐसा हो गया होगा। तुम्हारे आगे देखो हाथ जोड़ते हैं, आगे से कसम खाते हैं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज माफ कर दो।
0: अरे अरे कोई बात नहीं, रहने दीजिए, वो हम समझते हैं आप थोड़ा सा नशे में थे तो हो गई होगी गलती।
3: कितनी समझदार हो तुम। अच्छा सुनो, कल सुबह हमको जगा देना, हमको काम पे जाना है।
0: जी ठीक है। अरे सुनिए, माँ जी तो बोल रही थी कल आप उनको सुबह छोड़ने जाएंगे।
3: अम्मा को छोड़ना है? कहाँ?
0: हाँ उनके मायके।
3: अम्मा ने बताया नहीं? अरे ठीक है, हम अम्मा को छोड़ने के बाद से चले जाएंगे दफ्तर। तो ऐसा करो, तुम हमको तनी पहले ही जगा देना।
0: ठीक है, हम जगा देंगे।
3: चलो ठीक है।

0: नंदनी
1: जी आ गए।
0: अब तो अम्मा भी नहीं है। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं।
1: क्या लाए हैं?
0: वो बनवारी लाल के वहाँ का स्वादिष्ट जलेबी और रबड़ी लाए हैं तुम्हारे लिए।
1: आप रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। अभी बहुत सारा काम है ना, अम्मा जी भी घर पे नहीं है।
0: वही तो, अम्मा जी भी घर पे नहीं है, कहाँ हम लोग को ऐसा टाइम मिलता है। आओ बैठो, तनी बतियाओ हमसे और साथ में खाया जाए। स्वादिष्ट है ना?
1: हाँ बहुत।
0: अच्छा ये बताओ, तुमको शादी वाले दिन काका मिला था?
1: वो हमको बहुत सारा उपहार मिला था और पैसा भी मिला था बहुत सारा, सब रखे हैं संभाल के।
0: आओ ना तनी देखते हैं काका मिला है।
1: अब बाद में देखिएगा ना।
0: अरे आओ ना, 2 मिनट तो लगेगा। अब वैसे भी कौन सा इतना काम पड़ा हुआ है, हम तुम्हारा हेल्प कर देंगे।
1: अच्छा ठीक है चलिए। अब वो जो अलमारी के ऊपर संदूक रखा है ना, उसको नीचे उतारिए।
0: अरे अरे ये काम भी तुम हमसे ही करवाओगी। अच्छा चलो बैठो। बहुत भारी है, लग रहा है भर भर के उपहार मिला है तुमको अम्मा के वहाँ से।
1: हाँ क्योंकि सबसे छोटे हैं ना वहाँ पे, इसलिए।
0: अच्छा ये सबका चाबी वो भी कहाँ रखती हो तुम?
1: सब अलमारी में रखते हैं, बैग में अपने।
0: अच्छा अच्छा अच्छा चलो बढ़िया है। अच्छा सुनो, हमको देर हो रहा है, दफ्तर जाना है हमको।
1: ठीक है आप जाइए।
0: हेलो। हाँ सुरेश, अरे कैसन हो? एकदम में बढ़िया, एकदम में बढ़िया। हाँ कहाँ तुम आ रहे हो? अरे रे हमारे पास तो पैसा है नहीं अभी। अब तुमको तो पता ही है कि महीने का बीच चल रहा है और बीच में हमको सैलरी मिलता नहीं है, महीने के शुरुआत में मिलता है। अब देखो पार्टी तो हम करा दे पर हमारे पास पैसा उसे नहीं है। अच्छा ना ना, अरे अरे अरे ऐसी बात नहीं। अच्छा ठीक है तुम आओ, हम कहीं से व्यवस्था करते हैं। का करे किससे उधार ले हम? किराने वाले भैया? नहीं, उनका तो पहले से बहुत उधार है। ओम प्रकाश चाचा से लेकर शादी में बहुत खर्चा किए हैं। अम्मा भी नहीं है, नंदनी से मांग लेकर नहीं, क्या सोचेगी हमारे बारे में। ऐसा करते हैं कि उसके पर्स से निकाल ले कुछ पैसा, नहीं कहीं देख ले तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और दोस्त है, दोस्त को पार्टी ना कराए तो फिर बुरा मान जाएगा। ऐसा करते हैं निकाल लेते हैं, फिर जब मिलेगा तो चुप्पे से रख देंगे। और रखेंगे भी का है, बीवी है, हमारे सुख दुख में काम नहीं आएगी तो फिर किसके सुख दुख में काम आएगी। संदूक की चाबी कहाँ बताया था नंदनी ने? अरे हाँ अलमारी में कहीं देख ना ले, कहाँ नहीं आ रही है।
1: अरे क्या ढूंढ रहे हैं आप?
0: नहीं कुछ
1: ढूंढ रहे हैं तो मैं हेल्प कर देती हूँ।
0: अरे कुछ नहीं, वो बस हम फोन भूल गए थे, हम अपना वही देख रहे थे कहीं इसमें, उस दिन तुम दिखा रही थी तो छूट तो नहीं गया। अरे ठीक है तो हम आते हैं बाद में।
1: पता नहीं क्या हो गया इनको,
0: बच गया। पर कोई ना, पैसे तो मिल गए, पार्टी होगा आज रात को। हाँ सुरेश पैसे का व्यवस्था हो गया है, तुम बस आ जाओ। अच्छा नंदनी हम आते हैं थोड़ी देर में।
1: ठीक है जल्दी आइएगा।

0: नंदनी नंदनी नंदनी।
1: हाँ आ गए आ गए आ गए। क्या हो गया?
0: दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है तुमको? कहाँ थी तुम?
1: वो कुछ
0: चुप। एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से बहाने बनाती हो। आगे से कभी दरवाजा खोलने में देर लगा तो हाथ पैर हम तुम्हारे तोड़ देंगे।
1: ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं?
0: कैसी बातें कर रहा हूँ मैं? समझ में नहीं आती? दिमाग में नहीं घुस रही मेरी बातें?
1: ये आपको हो क्या गया है?
0: हट यहाँ से। तुम्हारा ढेर मन कर रहा है रोने का, रुलवा दे तुमको और चुपचाप से जाओ खाना लेके आओ हमारा। चुप।
1: खाना लग गया आपका, आके खा लीजिए।
0: क्या बनाया है तुमने खाने में?
1: भिंडी की सब्जी है और चावल बनाया है मैंने।
0: क्या ये बनाया खाने में? तुमको हम बोल के गए थे ना कि आज खाने में कुछ बढ़िया बनाना। ये बढ़िया है? ये भिंडी और ये चावल और दाल ऐसे अक्कल उक्कल बेच रही हो का तुम कहीं? माँ ने खाना ना बनाने को नहीं सिखाया का तुमको? सारा मूड खराब कर दिया। से
1: हम क्या करें, घर में पैसे ही नहीं थे और किसी ने संदूक से हमारे सारे पैसे निकाल लिए।
0: अब, अब, अब, अब पैसे निकाल लिए? कैसे निकाल लिए? तुमने कहीं इधर उधर रखे होंगे?
1: नहीं, हम उसी में रखे थे, हम संदूक में ही अपना पैसा रखे थे। और आप जब गए थे तो मैं वापस रूम में आई, मेरे पैसे नहीं थे, सारे गायब हो चुके थे।
0: तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पैसे हम लिए हैं? तूने तूने तूने चोर बोला हमको? तुम चोर बोल रही हो हमको? तुम्हारे सारे पैसे हमने लिए हैं? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा?
1: नहीं वो
0: तुमको हम अभी बताते हैं। एक तो तुमने खाना नहीं अच्छा बनाया और उसके बाद से तुम हमको चोर बोल रही हो। तुमको हम सिखाते हैं कि खाना कैसे बनता है। चलो मेरे साथ।
1: नहीं कहा ले जा रहे?
0: चलो चुपचाप।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी।
0: चलो यहाँ से।
1: मेरे बाल।
0: चुप।
1: नहीं दर्द हो रहा है मेरे बाल।
0: चलो यहाँ से।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, छोड़िए मेरे बाल।
0: तुमको हम बताते हैं।
1: नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप?
0: तुमने जिस जबान से हमको चोर बोला आज हम उस जबान को ही जला देंगे। और जिन हाथों से तुमने खाना बनाया है आज इस पे दाग पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ताकि अगले बार से तुम खाना बनाते वक्त ध्यान रखो।
1: छोड़िए मुझे प्लीज, छोड़िए। मेरे हाथ, मेरे हाथ, ओह छोड़िए प्लीज।
0: चुप।
1: माँ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। मेरे हाथ।
0: मुंह से अगर आवाज निकला तो जान से जाओगी तुम आज।
1: माँ माँ
0: चुप।
1: माँ कोई बचाओ।

नंदिनी के साथ जो हो रहा था वह हिंसा था, लेकिन इस बात की जानकारी उसे नहीं थी। वो हिंसा सह रही थी। उसके साथ शारीरिक हिंसा तो हो ही रही थी, साथ साथ वो आर्थिक हिंसा की भी शिकार थी। पारुतोष के प्रतिदिन के इस व्यवहार से वो परेशान हुई और अंत में उसने खुद तय किया कि वो पुलिस के पास जाएगी और उसके खिलाफ कंप्लेंट करेगी। वह पुलिस स्टेशन गई और वहां पर उसने अपनी सारी कहानी सुनाई।

पुलिस ने बताया कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो हिंसा है। उन्होंने बताया कि किसी को भी थप्पड़ मारना, दांत से काटना, मुक्का या लात से मारना या फिर किसी वस्तु का इस्तेमाल करके शरीर को चोट पहुंचाना शारीरिक हिंसा होती है। और पैसे से जुड़े अधिकार ना देना, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य या फिर शिक्षा से जुड़े अधिकार से वंचित रखना, घर के काम जरूरत से ज्यादा करवाना या फिर दहेज की मांग करना, खर्चे का हिसाब चिल्ला कर या मारपीट कर करना आर्थिक हिंसा होती है। इस वजह से आप शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह की हिंसा के शिकार होंगे। उन्होंने बताया कि हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाया गया है जिसके अंतर्गत आप शिकायत करके अपने साथ हो रहे हिंसा को रोक सकती हैं। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आप अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जिसके बाद आपको घरेलू हिंसा महिलाओं से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

उन्होंने नंदिनी को इस बात की जानकारी दी कि किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए निजी या सार्वजनिक स्थानों पर वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। वहां हिंसा की शिकायत कर अपने साथ हो रहे हिंसा से बचा जा सकता है। नंदिनी को बस इतना जानने की देरी थी। नंदिनी ने तुरंत अपने साथ हो रहे हिंसा की शिकायत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किया और उसे तुरंत प्रोटेक्शन भी मिला। अगर आप भी किसी भी तरह की हिंसा के शिकार हैं या आपके साथ हिंसा हो रही है तो इस बात की जानकारी अपने किसी भी करीबी को जरूर दें। इसके अलावा आप महिला हेल्पलाइन 1090 या 112 पर कॉल कर सकती हैं या महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश कर सकती हैं। और अगर आपके साथ हुई हिंसा का आपके पास कोई भी सबूत है तो उसे भी साझा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
5: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।
8: हाय मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसीलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर यह तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा।
1: आहा।

0: ओ छोरा गंगा।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
3: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा, तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी हैं। कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 3 की ध्वनि शाला में।
2: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा नमस्कार और ढेर सारा प्यार। आपको यूं लगा होगा कि आज उषा दीदी की सुई नमस्कार पर अटक गई। नहीं, अटकी तो मैं सिर्फ आप बच्चों में हूँ, नमस्कार पर मेरी सुई नहीं अटकती। आप बच्चों का प्यार इतना ज्यादा है कि मैं बार बार इस कार्यक्रम में आ जाती हूँ, तो मेरी अटकन सिर्फ बच्चों के साथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम कुछ मजेदार काम करेंगे। हम जैसी मजेदार कहानियाँ सुनते हैं, हम जितनी मजेदार कविताएं पढ़ते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, वैसे ही मजेदार कुछ काम हम आज करने वाले हैं। तो काम करें इससे पहले उस मजेदार कहानी को थोड़ा सा दोहरा लें। तो सारे बच्चे तैयार हैं? ठीक है। हमने कहानी कही थी चांद वाली अम्मा, यानी कि चांद वाली अम्मा एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बूढ़ी अम्मा है, एक चांद है और एक है आसमान। अम्मा अकेली रहती हैं, घर का सारा कामकाज करती हैं, आंगन में झाड़ू लगाती हैं, खाना बनाती हैं, पानी भर कर लाती हैं। और जब जब अम्मा झाड़ू लगाती हैं आंगन में, तब तब आसमान उनके साथ शरारतें करता है, उन्हें छेड़ता है और बार बार अम्मा से जाके टकरा जाता है। एक दिन अम्मा को खूब गुस्सा आया, इतना भयंकर गुस्सा आया अम्मा को कि उन्होंने आसमान को झाड़ू दे मारी। अब आसमान हट गया और अम्मा का वाद खाली चला गया। अम्मा ने फिर झाड़ू उठाई और फिर आसमान को उन्होंने दे मारी। इस बार आसमान ने झाड़ू पकड़ ली। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आसमान आकाश में ऊपर उड़ने लगा, लेकिन अम्मा तो अम्मा ठहरी, उन्होंने भी झाड़ू नहीं छोड़ी। अब एक सिरा आसमान के पास और एक सिरा अम्मा के पास। आसमान ऊपर उड़ता जा रहा था और अम्मा आसमान के साथ झाड़ू के सहारे ऊपर चलती चली जा रही थी, यानी उड़ती चली जा रही थी। अब क्या हुआ कि इतने में अम्मा ने चांद देखा, वे झट से चांद के ऊपर बैठ गई। अब आसमानियों ने बहुत मनाने की कोशिश की कि अम्मा आप यहाँ आ जाइए, लेकिन अम्मा टस से मस नहीं हुई और अपनी झाड़ू लेकर वे चांद पर बैठी रही। तभी से उन्हें कहते हैं कि चांद पर एक बूढ़ी अम्मा झाड़ू लेकर बैठी हैं। तो ये कहानी थी चांद वाली अम्मा की। अच्छा बच्चों, इस कहानी में एक बात यह भी आती है कि जब जब आसमान अम्मा को टक्कर मारता था, उन्हें परेशान करता था, तो अम्मा उसे घूर कर देखती थी, और जब अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता, लेकिन जैसे ही अम्मा दोबारा से झाड़ू लगाने बैठती आसमान फिर टकरा जाता। तो ये घूरना क्या है और घूरना क्या है और देखना क्या है, देखना क्या है और निहारना क्या है, और निहारना क्या है और टकटकी लगाकर देखना क्या है, क्या आप इन सभी शब्दों में कुछ अंतर कर सकते हैं? भाई देखिए, जहाँ तक देखने की बात है, यानी कि देखना शब्द की बात है, तो हम सामान्यतः जिस तरह से चीजों को देखते हैं, अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, तो ये हुआ देखना। अब निहारना क्या हुआ? तो निहारने का मतलब है देखते हुए सराहना करना, आपके सामने एक बहुत खूबसूरत मूर्ति है। आप उसे देखते भी हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि देखिए कारीगर ने कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई है। तो यह होता है निहारना। अब एक और शब्द हमारे पास है और वह शब्द है घूरना। घूरने में एक टक होकर देखना तो शामिल है, लेकिन उसमें गुस्सा भी मौजूद है। यानी जब अम्मा उसे घूर कर देखती, यानी आसमान को घूर कर देखती, तो आसमान थोड़ा हट जाता। तो आसमान क्यों हटता? इसी वजह से ना कि अम्मा उसे घूर रही है, और घूरने में क्या शामिल है? गुस्सा। अम्मा उसे गुस्से से देखती थी, जिसे हम कहते हैं घूरना। अब देखने से जुड़ा हुआ एक और शब्द हमारे पास है, वह है टकटकी लगाकर देखना। टकटकी लगाकर देखने में क्या शामिल है कि हम हतप्रभ रह जाते हैं और चीजों को देखते ही रह जाते हैं। नजर है कि हटने का नाम नहीं लेती, तो इसे हम कहते हैं टकटकी लगाकर देखना। मान लीजिए कि आपके घर के बाहर एक बगीचा है और उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं और उन फूलों के ऊपर सुंदर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। तितलियां इतनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर हैं कि आप उन्हें लगातार देखे जा रहे हैं। बस बच्चों, ये जो लगातार देखना होता है तारीफ के साथ, सराहना के साथ, इसे हम कहते हैं टकटकी लगाकर देखना। तो घूर कर देखना, टकटकी लगाकर देखना में लगातार देखना तो शामिल है, लेकिन घूरने में गुस्सा शामिल है और टकटकी लगाकर देखने में प्यार, प्रशंसा, तारीफ शामिल है। तो अब सारे बच्चे मुझे झटपट ये बताएंगे कि कब कब ऐसा होता है जब कोई आपको घूर कर देखता है? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो हुआ होगा, चाहे आप मुझे बताएं या न बताएं। जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ, ये बात कही है राजू ने। तो मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो आपके पिताजी का आपको कब घूर कर देखते हैं? तो आप कह सकते हैं कि मेरे पिताजी मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं भोजन नहीं करता। मेरे टीचर मुझे घूर कर तब देखते हैं जब वे पढ़ाते हैं और मैं बात करता हूँ। मेरी बहन, मेरा भाई मुझे घूर कर तब देखते हैं जब मैं उनके नए पेन ले लेता हूँ। तो यानी कुछ ऐसे काम करना जो काम नहीं करने चाहिए थे उन्हें करना। तो जब हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिन्हें नहीं किया जाना था, तो हमारे बड़े, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे भाई बहन हमें घूर कर देखते हैं। आपने भी तो कभी किसी को घूर कर देखा होगा, ये बात हमें आप चुपके से बता देना, हम किसी से नहीं कहेंगे। कहानी में रस्सा कशी की बात आई थी, तो हमने बात की थी कि रस्सा कशी एक खेल है। रस्सा कशी के खेल में दो टोलियों के बीच खूब खींचातानी होती है। क्या आप ऐसे खेलों के नाम बता सकते हैं जिनमें दो टोलियां खेलती हैं? मेरी पड़ोस में रहने वाली जो झुमकी है उसने कहा क्रिकेट। तो हमने कहा क्रिकेट में दो टोलियां, दो टीम तो होती हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं होती हैं। यानी कि पूरी की पूरी दोनों टोलियां एक दूसरे के सामने नहीं होती हैं। कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें एक एक व्यक्ति आमने सामने होते हैं, जैसे बैडमिंटन। अगर एकल खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये दो खिलाड़ी नहीं है, तो बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसमें दो टोलियां खेलती हैं। अब आप ये कहेंगे कि एक व्यक्ति से एक टोली कैसे बन सकती है? ये तो सही है। तो दो टोलियां किसमें होती हैं? वॉलीबॉल, जिसमें हम बॉल को नेट के दूसरी तरफ फेंकते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो सामने वाली टीम है उस बॉल को न पकड़ पाए। दो टोलियां होती हैं कबड्डी के खेल में। कबड्डी के खेल में भी दो टोलियां आमने सामने खड़ी होती हैं, जिसमें से एक व्यक्ति सामने वाली टोली में जाता है और बहुत सारे लोगों को छू कर वापस आने की कोशिश करता है। तो कुछ आप ऐसे खेल अपने दोस्तों के साथ जरूर खेलते होंगे, लेकिन आप कुछ ऐसे खेल भी खेलते होंगे जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो आप हमें सिखाएंगे कि आप कौन से खेल खेलते हैं जिसमें दो टोलियां खेलती हैं? ये बात आप हमें बता दीजिएगा और हम बाकी बच्चों के साथ यह अनुभव यह बात साझा कर लेंगे। कहानी में आपको याद है कि बूढ़ी अम्मा जब भी झाड़ू लगाती थी तो आसमान उनसे आके टकरा जाता था, और आपने यह भी बताया था कि झाड़ू का इस्तेमाल हम सफाई के लिए करते हैं। आप अपने घर को साफ करने के लिए या घर को स्वच्छ रखने के लिए और किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हो? जैसे झाड़न। झाड़न का मतलब है कोई पुराना कपड़ा जिसे हम झाड़ते हैं। क्या झाड़ते हैं? चीजों को नहीं झाड़ते हम, बल्कि धूल झाड़ते हैं। एक झाड़न हो सकता है, और क्या हो सकता है? पोछा हो सकता है, जिसे गीला कपड़ा करके हम फर्श साफ करते हैं। अब ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से मौके हैं जब आप घर का सारा सामान हटाकर जोर शोर से सफाई करते हैं? तो कुछ बच्चे कहेंगे कि हम ईद पर ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे हम दिवाली पर ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे कि हम होली पर ऐसा करते हैं, तो कुछ बच्चे कहेंगे हम क्रिसमस पे ऐसा करते हैं। यानी कि जब हमारे घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव होता है, त्योहार होता है, तो हम अक्सर घर का सारा सामान हटाकर खूब सफाई करते हैं। लेकिन इस सफाई में बच्चों को बिल्कुल मजा नहीं आता। कारण ये होता है कि अक्सर घर के बड़े बच्चों से बहुत सारा काम करवाते हैं। वे कहेंगे, बेटा जरा ये टेबल उधर रख देना, अरे मेरे बच्चे ये प्लेट उठा के वहां रख देना, अच्छा ये जो गमला रखा है इसको वहां बालकनी में रख दो। जब बड़े ही सारा काम नहीं करते हैं तो फिर हम ही क्यों करें? हमसे कहते रहेंगे ये काम करो वो काम करो और खुद सारा काम नहीं करते हैं। लेकिन सब मिलजुल कर करेंगे तो घर का सारा काम समाप्त हो सकता है। तो ये कुछ खास मौके थे कि जब हम घर का सारा सामान हटाकर जोर शोर से सफाई करते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए कुछ शब्द आपके जहन में आते हैं तो आप हमें बताइए, जैसे झाड़ना, पोछा लगाना, बुहारना, जाले उतारना। ये सारे काम ऐसे हैं, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो सफाई के काम से जुड़े हुए हैं। अब बच्चों आपने सफाई तो बहुत कर ली, और मुझे मालूम है कि सारे बच्चे सफाई पसंद हैं। वे झटपट नहा भी लेते हैं, हाथ भी धो लेते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं, और फिर बहुत सारा काम वे चुटकी बजाते हुए कर लेते हैं। तो साफ सफाई के बाद अब हम चलते हैं बूढ़ी अम्मा के पास। बूढ़ी अम्मा तो चांद पे बैठी है झाड़ू लेकर। तो कोई बात नहीं, हम बूढ़ी अम्मा से यही से बात कर लेते हैं। आपको मालूम है ना बच्चों कि बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, याद आया? शाबाश। तो बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी और उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। तो उन कामों की सूची बनाइए जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। मान लीजिए कि यही बूढ़ी अम्मा आपके पड़ोस में रहती हैं, तो आप बता सकते हैं कि वे सुबह से शाम तक क्या क्या काम करती होंगी? सबसे पहले घर में झाड़ू लगाना या घर की सफाई करना, पानी भरना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर की साफ सफाई करना, जाले उतारना। तो ऐसे ढेर सारे काम हैं जो बूढ़ी अम्मा सुबह से शाम तक अकेले करती हैं। तो जो काम बूढ़ी अम्मा अकेले करती हैं, क्या वही काम आपके घर में सब लोग अकेले करते हैं या मिलजुल कर करते हैं? तो बूढ़ी अम्मा का एक काम है झाड़ू लगाना, और झाड़ू लगाने का यह काम आपके घर में कौन करता है, ये आप बताइएगा। बूढ़ी अम्मा का काम था भोजन बनाना, तो आपके घर में भोजन कौन बनाता है? बूढ़ी अम्मा पानी भरने भी जाती थी, तो आपके घर में पानी भरने का काम कौन करता है? तो आपको वे काम बताने हैं जो बूढ़ी अम्मा करती थी, और वे काम बताने हैं कि वे सारे काम जो बूढ़ी अम्मा करती थी वे आपके घर में कौन करता है। अच्छा, सारे काम बड़े ही कर लेते हैं या बच्चे भी कुछ काम करते हैं? आप भी तो अपने घर में कुछ ना कुछ काम करते होंगे, तो आप अपने कामों के बारे में बताइए। आप घर के कौन से काम करते हैं और घर से बाहर के कौन से काम करते हैं? अब आप पूछेंगे कि घर के काम, घर से बाहर के काम हम कैसे फर्क करेंगे? सीधी सी बात है, जो काम आप घर के भीतर करते हैं वे हुए घर के काम, और जो काम आप घर से बाहर जाकर करते हैं वे हुए घर से बाहर के काम। तो घर का एक काम तो यही है कि हम अपने बर्तन उठा के रखते हैं, और घर के बाहर का काम क्या है? घर के बाहर का काम ये है कि हम पौधों को पानी दे देते हैं। घर के भीतर का काम क्या है? घर के भीतर का काम ये है कि हम अपने कपड़े तय करके रख देते हैं। तो घर से बाहर का काम क्या है? घर से बाहर का काम यह है कि हम जो घर के आसपास कूड़ा फैला होता है, पत्थर फैले होते हैं, उन्हें साफ कर देते हैं। क्या आप सब बच्चे घर के अंदर अपने कपड़े भी धोते हैं? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ हम तो धो लेते हैं, ये काम घर के अंदर होता है। और कपड़े सुखाने का काम वह घर के बाहर होता है। घर के अंदर हम अपनी मम्मी के काम में हाथ बटाते हैं। अगर वे खाना बना रही हैं तो हम खाना परोसने में उनकी मदद करते हैं, और अगर वे झाड़ू लगा रही हैं तो हम सारा सामान उठाकर एक तरफ कर देते हैं। और घर के बाहर ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम खूब मजे से करते हैं। शॉपिंग करना, चीजों की खरीदारी करना, ये काम सब बच्चों को बहुत पसंद आता है। अच्छा बच्चों, कभी आपने सोचा है कि बूढ़ी अम्मा अकेली रहती हैं और अकेले ही वे घर के सारे काम करती हैं, और उनकी उम्र भी हो गई है, तो क्या वे थकती नहीं होंगी? वे जरूर थकती होंगी, लेकिन तब भी उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। अगर मान लीजिए कि बूढ़ी अम्मा के पड़ोस में आप रहते हैं, तो बूढ़ी अम्मा के अलग अलग कामों में आप मदद किस तरह से करते, सोचिए और हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। बच्चों, इस कहानी में ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो किसी चीज का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो ऐसे कौन से शब्द हैं आप बता सकते हैं? शाबाश, बहुत अच्छे, आपने बताया झाड़ू, आसमान, अम्मा, कुआं, पानी, खाना, चांद। शाबाश बच्चों, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो किसी चीज के नाम हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं जो काम के नाम हैं, यानी कि जिनसे काम के होने का पता चलता है, जैसे झाड़ू लगाना, जैसे खाना बनाना, जैसे पानी लाना, जैसे घूरना, जैसे टकराना, जैसे दौड़ना, जैसे झुकना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो काम को दर्शाते हैं। कुछ ऐसे ही शब्द और भी हैं, जैसे वार करना, जैसे हट जाना, पकड़ना, छोड़ना, थकना, चिल्लाना, कहना, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी काम को दर्शाते हैं। तो आम तौर पर हमें अभी दो ही तरह के शब्दों के बारे में पता चला जिनका प्रयोग आप यूं फर्राटे से करते हैं, काम वाले शब्द और नाम वाले शब्द। तो आपको अपनी कहानी की किताब में से कुछ काम वाले शब्द बताने हैं और कुछ नाम वाले शब्द बताने हैं, और फिर हम देखेंगे कि आपके पास नाम वाले शब्द ज्यादा हैं या फिर काम वाले शब्द ज्यादा हैं। आपने आसमान की शरारत के बारे में तो पूरी कहानी सुन ली, अब आपकी बारी है कि आप अपनी शरारत के बारे में कुछ लिखेंगे। लिखना आपका काम है, शुरुआत मैं कर देती हूँ। अगर मुझे अपनी शरारत के बारे में लिखना हो तो मेरी शुरुआत कैसे होगी? कुछ इस तरह, अरे आसमान की शरारत तो कुछ नहीं, मैंने तो एक बार और इसके बाद आपकी शरारत की जो कथा है, जो गाथा है, वह शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी दो कहानियां लिखनी है। एक कहानी तो है कि आसमान की शरारत तो कुछ नहीं, एक बार मैंने तो, और उसके बाद अपनी कहानी लिख दीजिए। और दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी ये है कि अगर आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ी होती तो क्या होता। कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि सूरज और चांद हमेशा ऊपर दिखाई देते हैं, वे जमीन पर क्यों नहीं होते जैसे बहुत सारे पशु पक्षी जमीन पर होते हैं। तो इसकी भी एक कहानी है, लेकिन ये सिर्फ कहानी है, हकीकत नहीं है। तो सूरज और चांद ऊपर क्यों गए इसके बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर गया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहां बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। बस तभी से सूरज और चांद ऊपर ही रहते हैं और पानी, मछलियां, पानी के जानवर, वे सब नीचे रहते हैं। कुछ ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियां हैं सूरज चांद के बारे में, हाथी के बारे में, बिल्ली के बारे में और ग्रहण लगने के बारे में। तो इन मजेदार किस्सों को खोजिए, आपस में बताइए और हमारे पास भी लिखकर जरूर भेजिएगा। हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। तो हमें आपके कामों की और आपकी कहानियों की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए आप उषा दीदी को इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ और बहुत जल्द आपसे वापस आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
3: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग

0: की स्थिति में तुरंत क्या करें? ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जाँच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here. Vasudhaiva, Vasudhaiva. ने कहा

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Bingo on Malaysia. The end. दिमागी बुखार का दी एंड। ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह।

0: अक्षरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी। मिलकर काम करना हमें प्रकृति से सीखना होगा और समझ बूझ जीवन को कब एक नए क्षितिज की ओर ले जाती है ये बताएगी हमारी आज की कड़ी, जिसका शीर्षक है साथी।

0: ये मानव अभी तक नहीं लौटा। लगा होगा अपने दोस्तों के बीच में अपनी शेखी बगा रहा होगा। पता नहीं क्या करता है लड़का।
1: हाँ मम्मी, जब से अपना मानव फुटबॉल का मैच जीता है उसके पाँव जमीन पर पड़ते ही नहीं है। रात दिन कभी फुटबॉल की तरह जमीन पर तो कभी हवा में रहता है।
0: उसमें ये अकड़ तो मैं भी देख रही हूँ। कहाँ हमने ये चाहा था कि वो मिलजुल कर रहना सीखे, और कहाँ वो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं।
1: हाँ मम्मी, अब तो वो अपना होमवर्क भी दूसरे बच्चों से करा लेता है। सभी उसे फुटबॉल का बड़ा खिलाड़ी मानने लगे हैं।
2: क्या हुआ भाई, सुबह सुबह माँ बेटी में ये क्या कानाफूसी चल रही है?
0: कुछ भी नहीं, बस थोड़ा मानव की चिंता सता रही है।
2: क्यों?
0: अपने काम दूसरों पर टालने लगा है वो।
1: हाँ पापा, उसके दोस्त भी पता नहीं उसे क्या समझते हैं। हर समय उसके आगे पीछे रहते हैं, हर काम को तैयार।
2: अरे अभी अभी फुटबॉल मैच जिताया है ना मानव ने, इसीलिए सबका हीरो बना हुआ है। धीरे धीरे फिर धरती पर आ जाएगा।
1: पर पापा, वो अपने सारे काम, यहाँ तक कि होमवर्क भी अपने दोस्तों से कराता है।
2: अब चलो, अभी डॉक्टर इस्लाम और उनके मित्र डॉक्टर नरेश सिरोही आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर इस्लाम तो बच्चों को समझाने में माहिर हैं।
0: हाँ, ये तो है। कहाँ अपना मानव हमेशा उनकी डांट से डरता था, और अब कहाँ उनकी हर बात सुनने समझने को तैयार रहता है।
1: अरे मम्मी, वो सब तो इसलिए क्योंकि वो इन सब ज्ञान भरी बातों को अपने दोस्तों में सुनाकर डींगे मारता है।
2: ओह, लेकिन सृष्टि बेटा, ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, और ये तो अच्छी बात है। परंतु हाँ, अगर घमंड आ जाए तो हर ज्ञान व्यर्थ है।
0: हाँ, यही घमंड तो आ गया है आपके सपूत में।
2: अच्छा,
0: ज्ञान का तो पता नहीं उसे कितना मिला है, पर घमंड कूट कूट के भरा है।
2: अच्छा?
0: अब नहीं कहोगे जैसा पिता वैसा पुत्र।
2: अब हाँ, इस समय क्यों बोलूं मैं? चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे ये विवेक सुबह सुबह कहाँ चला गया, और ये मानव है कहाँ पे?
1: विवेक भैया, वो तो कोई लाइब्रेरी की किताब लौटाने गए हैं, अभी आ जाएंगे। और मानव मोहल्ले के लड़कों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा है। अब मानव साहब कब आएंगे ये तो मुझे पता नहीं।
0: अरे लगता है विवेक आ गया।
2: हाँ, देखो देखो। हाँ,
3: अरे इस्लाम भाई साहब।
4: ये हमारे मित्र हैं डॉक्टर नरेश सिरोही।
1: नमस्ते अंकल,
0: आप भी अंदर आइए भाई साहब।
2: बैठो भाई बैठो, अब कैसे हो तुम? बैठो बैठो ना।
0: अरे विवेक भी आ गया।
5: नमस्ते अंकल।
4: नमस्ते नमस्ते। और विवेक, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो भाई?
5: लाइब्रेरी गया था कुछ किताबें लौटानी थी।
4: विवेक, सृष्टि, ये नरेश अंकल हैं।
1: नमस्ते अंकल।
6: नमस्ते नमस्ते।
4: ये महासागर विज्ञानी हैं, पता है समुद्र की चौड़ाई गहराई नापते रहते हैं।
6: उड़ा लीजिए, आप भी मजाक उड़ा लो प्रोफेसर इस्लाम पर, हमारे बगैर काम नहीं चलने वाला।
2: ये बात तो सही है।
0: और ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ कि मेरे बिना भी काम नहीं चलने वाला, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ।
2: ये अच्छी बात है भाई।
4: विवेक, तुम्हारा छोटा भाई नहीं दिख रहा, क्या अभी तक सो रहा है वो? है
1: कहाँ अंकल, जब से फुटबॉल मैच जीत कर आया है तब से बस दिमाग ही फुटबॉल जैसा बन गया है। सुबह शाम बस फुटबॉल प्रैक्टिस बस।
4: अरे वाह, तो अपना मानव पिंटू की टीम से फुटबॉल मैच जीत गया भाई। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है।
2: हाँ इस्लाम भाई, बढ़िया तो है, पर पता नहीं उसमें इतना घमंड आ गया है कि बस पूछो नहीं। और ऊपर से उसके दोस्त भी उसे इतना भाव देते हैं जैसे कहीं का राष्ट्रपति हो।
5: हाँ पापा, कल मैंने देखा कि जब मानव स्कूल से आ रहा था तो उसका दोस्त हैप्पी है ना, उसका बैग और बोतल पकड़कर पीछे पीछे चल रहा था।
2: हाँ, बात कर।
1: पीछे।
5: और मैंने पूछा तो मानव नहीं हैप्पी कहने लगा कि विवेक भैया रहने दो, मेरी गलती से दो गोल हुए, अब इतनी सजा तो सहनी पड़ेगी। अब बताओ पापा।
2: वो तो बेचारा हैप्पी की जगह दुखी हो गया होगा।
4: ओ, तो मानव जी अब सजा भी देने लग गए। चलिए आने दीजिए, बात करते हैं उनसे।
2: हाँ, सही रहेगा।
1: ओ, लगता है आ गए हमारे मोहल्ले के पेले।
7: ए हैप्पी, चल फुटबॉल अंदर रख। अरे अंकल आप, नमस्ते।
4: नमस्ते मानव भाई, तुम्हें पिंटू की टीम पर मिली जीत मुबारक हो।
7: थैंक यू अंकल। अंकल ये फुटबॉल है ना, ये पिंटू की है जो हमें जीतने पर मिली है।
8: और अंकल, अब पिंटू फुटबॉल भी नहीं खेलता, बस चुपचाप बैठकर हमें खेलता देखता रहता है।
4: अच्छा बच्चों, ये नरेश अंकल हैं, ये समुद्र के विशेषज्ञ हैं, इनसे तुम अपने महासागरों सागरों से संबंधित सभी सवाल पूछ सकते हो।
8: अरे वाह अंकल, हमें तो महासागरों पर होमवर्क भी मिला है। मानव, तेरा होमवर्क भी मैं ही कर लूंगा, ठीक है?
7: ओ ठीक है हैप्पी। अंकल, हमें पिछली बार आपने महासागर, भूमि और वायुमंडल का आपसी तालमेल तो बताया था, आज तो आप महासागरों में कैसे गतिविधियां होती हैं ये बताने वाले थे।
4: आज तो यही बताना है, फिर अगली बार वायुमंडल को ले लेंगे। अच्छा, तुम्हें याद है ना कि गायर यानी वृत्ताकार गति क्या होती है?
7: हाँ अंकल, सागरों महासागरों में पानी बड़े बड़े लूप यानी पाश के रूप में प्रवाहित होता है, इन्हें ही गायर कहते हैं।
6: वाह वाह, भाई मानव तो बहुत कुछ जानता है आपका। हा?
8: हाँ अंकल, मानव को बहुत कुछ पता है, ये तो बड़ा होशियार है।
6: अरे भाई वाह मानव।
4: अच्छा मानव, क्या तुम जानते हो इन गायर के घूमने की दिशा उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग में क्या होती है?
7: अंकल ये तो नहीं पता।
8: तेनु नहीं पता?
5: मानव, भूमध्य रेखा से ऊपर यानी उत्तरी भाग में ये गायर घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं यानी क्लॉकवाइज, जबकि भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये गायर घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज। समझे?
1: कुछ समझे मानव?
7: हाँ, पर ऐसा क्यों होता है?
6: अब भाई विवेक को तो काफी जानकारी है। हाँ तो ऐसा क्यों होता है ये मैं बताता हूँ। असल में धरती के सतह पर हवाओं की भी एक खास हलचल रहती है। महासागरों का प्रवाह उनकी सतह पर चलने वाली हवाओं के कारण बनता है, जिससे पूरे विश्व में ताप का संचरण होता है।
7: ताप का संचरण यानी?
5: यानी ताप का पूरी पृथ्वी पर वितरण। हाँ। जिससे तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव ना आने पाए, तभी तो धरती पर जीवन संभव हुआ।
4: विवेक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मानव, जैसा तुम्हें पहले बताया है कि हवा और पानी की ये गतिविधि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर होती है, तो ये शक्तिशाली महासागरों का प्रवाह इन तेज हवाओं की मदद से ध्रुवों की ओर चलता है। परंतु तुम जानते हो कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है, जानते हो कि नहीं?
7: हाँ हाँ अंकल पता है।
6: हाँ तो बस इसी धुरी पर घूमने की वजह से सारे वायुमंडल चक्र और महासागरीय चक्रों में एक अनोखापन आता है, और भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में महासागरों के जल का प्रवाह दाईं ओर होता है यानी घड़ी की सुई की दिशा में।
4: दक्षिणी गोलार्ध में धरती के अपनी धुरी पर घूमने के कारण महासागरों का प्रवाह बाईं ओर होता है यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा।
6: हाँ।
4: हालांकि गोलार्ध को छोटे से तटीय क्षेत्र में थोड़ा बहुत फर्क मिलता है, परंतु सामान्यतः यही दिशा रहती है।
5: अंकल, जब यही प्रवाह किसी महाद्वीप के तटीय इलाकों से टकराता है तो ये बाउंड्री करंट यानी सीमा रेखा प्रवाह बन जाता है ना?
6: बिल्कुल ठीक विवेक। इसके अलावा अलग अलग महासागरों के जल की भिन्नता से भी महासागरीय फ्रंट बनते हैं। ये रंग में भिन्नता, तापमान वे लवणता में फर्क के द्वारा पहचाने जाते हैं।
5: अच्छा।
6: पूर्वी सीमा पर इन प्रवाहों की गति कम होती है और पश्चिमी सीमा पर ये प्रवाह तेज होते हैं।
4: और ये सब महासागर, वायुमंडल और भूमि के परस्पर संबंधों के कारण होता है। ये बाउंड्री प्रवाह भूमध्य क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्य प्रकाश।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा। और मैं भी जोड़ूं इसमें कुछ?
4: मैं चाह रहा था कि तुम चुपचाप बैठे हो, कुछ बोल नहीं रहे।
2: भाई देखो, उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम जो उत्तरी दिशा की ओर जाने वाला प्रवाह है, ठंडे प्रदेशों की ओर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का हस्तांतरण कर देता है। जब उत्तरी गोलार्ध से जो पानी दक्षिण की ओर आता है उसे हम देख सकते हैं कि वो ठंडा पानी है जो भूमध्य रेखा पर दोबारा गर्म होने के लिए आ रहा है, और ये महासागरीय संचरण का एक छोटा जिया नमूना है।
1: यानी ये तो एक तरह से समुद्र मंथन हुआ जिसके कारण ताप का समान वितरण होता रहता है।
5: बिल्कुल ठीक, और ऐसा ही कुछ वायुमंडल में होता है।
4: और इसी समुद्र और वायुमंडल के मंथन से समुद्र और पृथ्वी पर जीवन लायक तापमान बना रहता है।
2: हाँ, बिल्कुल।
1: हाँ, और ये तापमान बना रहा है इसलिए चाय लीजिए बिस्किट के साथ।
2: वाह भाई लाओ, बहुत बढ़िया भाई, भूख भी लग रही थी है ना भाई। लीजिए लीजिए नरेश भाई, आप भी लीजिए। इस्लाम लो ना भाई।
4: तो मानव, इतनी सारी बातें हो रही हैं, कुछ समझ रहे हो?
7: हाँ अंकल कुछ कुछ
2: कुछ कुछ।
8: अंकल क्या समुद्र में नदियाँ भी होती
7: है? अरे समुद्र में नदियाँ? अरे हैप्पी, सारी नदियाँ तो समुद्र में ही गिरती हैं। समुद्र में नदियाँ नहीं होती। पागल।
8: पर मेरे चाचा जी ने बताया था।
7: अरे गलत बता दिया होगा।
4: पर मानव, तुम्हें कैसे पता कि ये गलत है?
7: मतलब
6: ये कि एक तो सारी नदियां समुद्र में नहीं खत्म होती और दूसरा समुद्र में भी नदियां होती हैं।
7: पर अंकल नदियां तो समुद्र में ही गिरती हैं।
4: हाँ पर सारी नहीं, कुछ नदियां हैं जो सागरों तक पहुंचने से पहले ही सूख जाती हैं। जैसे उत्तरी अफ्रीका की तासिली पहाड़ियों से बहने वाली नदियां सहारा रेगिस्तान की तपती गर्मी और शुष्क जलवायु में सूख जाती हैं, समुद्र तक पहुंच नहीं पाती।
1: अंकल आजकल तो बड़े बांध और सिंचाई नहरों के कारण भी कई बड़ी बड़ी नदियां भी सागर से नहीं

0: पाती है ना।
1: बिल्कुल ठीक है, शाबाश। पर सब मानव के दखल से ही हो रहा है।
2: क्या हो रहा है मेरे दखल से? मैंने क्या किया? नदियों का सागरों तक पहुंचने से पहले सूखना या इस प्रक्रिया का मेरे पूछने पर विस्तार से समझाना, क्या हो रहा है मेरे दखल देने से?
0: अरे मानव, दोनों हो रहा है। मानव के कारण पर्यावरण का नाश और मानव के ही कारण ज्ञान भरी बातें।
3: अंकल, तो समुद्र के अंदर नदियां होती है ना?
4: हाँ हैप्पी बेटे, होती। अरे बेटे, हम नदियों को भूमि पर बहने वाले पानी का प्रवाह समझते हैं, पर हम जब इन समुद्रों में बहने वाली नदियों की बात कर रहे हैं तो असल में हम इन समुद्रों पर बहने वाली हवाओं के कारण बने प्रवाहों की बात कर रहे होते हैं। असल में बेटे, इन्हीं को तो ओशन करंट यानी महासागरीय प्रवाह कहते हैं, जो पूरी पृथ्वी के महासागरों सागरों में गतिमान रहते हैं। ये धरती को गर्म और ठंडा करने में मदद करते हैं।
5: हाँ, और सबसे बड़ी सागर में बहने वाली नदी या प्रवाह कहें तो वो एंटार्क्टिका के आसपास गतिशील वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यानी पश्चिमी वायु बहाव है। पता है, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक अमेज़न नदी से भी 2000 गुना ज्यादा पानी बहता है।
3: ओए मानव, तेरे पापा को तो बहुत पता है। इतनी बड़ी नदी समुद्र में? देखा मानव, मैं ठीक कह रहा था ना?
2: ठीक है ठीक है। हाँ अंकल, आप कह रहे थे कि महासागरों में गतिविधियां सघनता के कारण होती हैं।
4: हाँ मानव, लेकिन सिर्फ सघनता के कारण ही मूवमेंट नहीं होते। अगर मोटे तौर पर देखें तो महासागरीय जल में होने वाली गतिविधियों के लिए दो मुख्य कारक हैं। पहला, महासागर की सतह पर बहने वाली हवाओं से तालमेल के कारण, और दूसरा, महासागर के अंदर ही सघनता में भिन्नता।
1: हाँ, तो बच्चों, इन कारकों या कहें ताकतों के परिणाम स्वरूप होने वाली गतिविधियां महासागरों के तल से प्रभावित होकर मुड़ जाती हैं, या फिर धरती के अपनी धुरी पर घूमने के कारण इनमें घुमाव आ जाता है।
4: अच्छा,
0: और धरती के अपनी धुरी पर घूमने के कारण आने वाले इस डिप्लेक्शन यानी दिशा परिवर्तन को कोरियोलिस प्रभाव या बल कहते हैं, और ये नाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीजी कोरियोलिस के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस बल की खोज की थी।
4: अरे वाह सृष्टि बेटा, शाबाश। तुम्हें ये सब कैसे पता चला?
5: मैंने बताया होगा।
0: नहीं पापा, विवेक भैया ने बताया।
5: उसे भी मैंने ही बताया होगा।
4: अरे मानव, जब तुम्हारे पास तुम्हारे विवेक भैया हैं, तो तुम्हें हमारी क्या जरूरत है भाई? शाबाश शाबाश।
6: थैंक यू अंकल। पर ये मानव मेरी अहमियत समझता कहाँ है? आजकल तो बस अपनी ही धुन में खोया रहता है।
2: नहीं नहीं विवेक भैया, मैं आपसे इतने सवाल पूछता तो हूँ।
0: अरे वो तो तब पूछता है जब तुझे विवेक भैया को पटाना होता है।
1: हाँ तो भाई, इस तरह से चार मुख्य बातें हैं जो महासागरीय जल की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं।
6: अच्छा,
1: पहली है हवा द्वारा चालित प्रवाह, जो इस पर निर्भर करता है कि वर्तमान में वायु प्रणाली क्या है। इसमें ईस्टर्ली प्रवाह शामिल है, जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर होता है और जो व्यापारिक हवाओं से भी संबंधित है।
2: अंकल, ये ईस्टर्ली और व्यापारिक हवाएं क्या है?
4: बताएंगे मानव, ये भी बताएंगे कि वेस्टर्ली भी क्या है, परंतु ये वायुमंडलीय संचरण के साथ बताएंगे। अभी महासागरों के जल संचरण को थोड़ा समझो, समझे?
1: हाँ मानव, महासागरों की सतह पर चलने वाली हवाओं में थोड़ा सा वर्टिकल मूवमेंट यानी सीधी गतिविधि भी होती है, जो करीब 10 मीटर की गहराई तक अपना प्रभाव छोड़ती है, और अपने साथ साथ ये मूवमेंट सतह के ताप और गैसों को इस गहराई यानी 10 मीटर तक अच्छी तरह मिला देता है। इस प्रकार गहराई तक में हवा द्वारा किए जाने वाले संचरण को लैंगम्यूर संचरण कहते हैं।
5: हाँ, अब अलबत्ता महासागरीय जल के प्रवाह का कारण है सघनता में भिन्नता, जो जल के तापमान और लवणता द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे उच्च तापमान और निम्न लवणता, मतलब
0: कम सघनता और निम्न तापमान और अत्यधिक लवणता, मतलब
3: अत्यधिक सघनता।
1: तो अब अगला कारक है महासागरों के तल का आकार, इससे जल की गतिविधि प्रभावित होती है। ये सतही प्रवाह को सीमा रेखा प्रवाह में बांट देता है और साथ ही साथ गहरे पानी के संचरण को भी तय करता है।
4: और चौथा कारक है धरती का उसकी धुरी पर घूमना।
0: हाँ अंकल, ये तो हम बिल्कुल समझ गए हैं।
1: तो अब इसके अलावा और भी कई कारक हैं, पर अभी तुम यही समझो।
4: ठीक कहा नरेश।
3: अंकल, मेरे चाचा कहते हैं कि समुद्र के अंदर जो प्रवाह होता है वो बहुत खतरनाक होता है।
2: अरे जब पानी के अंदर है तो खतरनाक कैसे होगा।
4: अरे चुप मारा चुप। ठीक कहा हैप्पी बेटे, बहुत बढ़िया। अंडर वाटर करंट
5: इस्लाम तुम इसको डरा देते हो।
4: अरे बात ही ऐसी बोलता हूँ। हाँ तो मैं बता रहा था अंडर वाटर करंट यानी अंतर जलीय प्रवाह बहुत खतरनाक होता है, और मैं आप सबको बताऊं कि हर वर्ष इससे कई मौतें होती हैं। सागर की सतह का पानी शांत नजर आता है, परंतु शक्तिशाली अंतरजलीय प्रवाह तैराकों को नीचे खींच लेता है या तट से दूर ले जाता है, जिससे तैराक थककर डूब भी सकते हैं।
6: भाई हैप्पी, तुम तो बड़े होशियार हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने चाचा जी से सवाल भी करते हो। शाबाश।
3: थैंक यू विवेक पाजी।
1: पर मानव तुम्हें कुछ समझ आया कि नहीं?
2: आया अंकल, बिल्कुल समझ आया।
4: तो मानव ये पता लगा कि सारे महासागरीय वायुमंडलीय भूमि के चक्र संचरण एक दूसरे पर निर्भर होते हुए भी अपना अपना काम अपने आप और पूरी निष्ठा से करते हैं, समझे?
0: हाँ, अपना काम दूसरों पर नहीं डालते।
1: हाँ, जैसे भूमि से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी महासागरों सागर को नमकीन बनाती है, जिससे महासागरों में सघनता की भिन्नता आती है और संचरण होता है।
6: हाँ, और भूमि के सुपकार पर महासागर फूलते नहीं, बल्कि बारिश की फुहार बनकर भूमि पर बरसते हैं, उसे हरा भरा कर देते हैं।
0: यानी किसी से कुछ छीना नहीं, ना लिया ना दिया, बस अपना अपना फर्ज निभाया, अपने और सबके फायदे के लिए और अस्तित्व के लिए।
3: समझा मानव?
2: हाँ, हाँ समझ गया। हैप्पी, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूंगा, और अगर तुझे कुछ पूछना हो तो मुझे बता देना, ठीक है?
3: ठीक है मानव, ठीक है।
5: अरे वाह मानव, तो सच में समझ गया। अब खैर चलो भाई, अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लेते हैं। अब इस्लाम भाई, डॉक्टर नरेश आप भी आइए ना, खाना खा लेते हैं भाई, बहुत भूख लग रही
7: है। चलो चलो विवेक, सृष्टि चलो हाथ धोकर खाना खाओ।
3: हाँ मम्मी, हाँ मम्मी।
5: अरे अरे, अरे ये मानव कहाँ भागा जा रहा है? मानव, ओ मानव।
2: पापा आप लोग खाना खाइए, मैं पिंटू को उसकी फुटबॉल देकर आता हूँ।
0: क्या बात है,
4: मानवता अभी खत्म नहीं हुई
0: है।
8: हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। सूक्ष्म जीव, वनस्पतियां वो विभिन्न जीव जंतु यहाँ जीवन के विविध रूपों में समन्वय बनाए हुए हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जीवन का हर एक रूप, या कहें कि जीवों की एक प्रजाति, अपने अस्तित्व के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों की जब हम बात करते हैं तो हम मानव प्रजाति की भी बात करते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को समझना और उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहें तो हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के विभिन्न रूपों की परस्पर निर्भरता और जीवन के लिए हवा, पानी व मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा। पृथ्वी पर जीवन लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पनपा है। जीवों की वे प्रजातियां पृथ्वी पर रही है जिन्होंने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे परिवर्तन भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात और इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक कारणों से भी हुए होंगे। अक्सर ये परिवर्तन उन प्रजातियों द्वारा लाए गए थे जो विकास की सीढ़ी पर ऊंचे पायदान पर बैठी हैं। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं और विकास के लिए पर्यावरण पर नियंत्रण करने की कोशिश की, और यही मानव प्रजाति ने अपने नाजुक संतुलन पर टीके पृथ्वी ग्रह पर भी किया। हमें विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हम सदियों से परंपरागत स्वरूप से जलावन लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते आ रहे हैं। आज इस बात को सभी मानते हैं कि कोयले के दहन जैसी मानवीय गतिविधियों से ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ने लगा है और पृथ्वी दिनों दिन गर्माती जा रही है। आज हमारे ग्रह पर कई खतरे मंडरा रहे हैं, जो मुख्यतः बदलती जलवायु, बिगड़ता पर्यावरण, प्रजातियों का तेजी से सफाया होना, शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, नदियों का समुद्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाना, बंजर होती उपजाऊ जमीन, ऊर्जा स्रोतों की बिगड़ती हालत, बढ़ती बीमारियां, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसका पेट भरना, ये सब समस्याएं हैं। इन सब की वजह से आज मानव का अस्तित्व ही खतरे में आ पड़ा है। आज हम चादर से अधिक पैर पसार रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक की आवश्यकता है। मानवीय आवश्यकताओं की मांग पृथ्वी की क्षमता से परे है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं और जिससे आज विकासशील देशों के अरबों लोग संकटों के साए में जी रहे हैं। इस दिशा में विश्व का ध्यान आकर्षित करने और यह बताने के लिए कि पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं और विकास को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने व समझने की कोशिश करने के लिए कि सभी के सहयोग से हम पृथ्वी ग्रह पर जीवन और जैव विविधता को बनाए रखेंगे, लोगों को चुनौतियों के साथ संभावित समाधानों के प्रति जागरूक करते हुए पृथ्वी ग्रह को संभावित विपदों से बचाना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रसार 19 भारतीय भाषाओं में 52 कड़ियों वाला धारावाहिक धरती मेरी धरती विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है, जिसका उद्देश्य विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के साथ लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता का प्रसार करना है। इस धारावाहिक के माध्यम से पृथ्वी ग्रह के विभिन्न पहलुओं जैसे पृथ्वी के निर्माण, स्थलमंडल, महासागरों, वायुमंडल, जैवमंडल और जैव विविधता पर हम बात करेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि धरती मेरी धरती धारावाहिक नई पीढ़ी को पूरे ब्रह्मांड में जीवन को पनाह देने वाले इस पृथ्वी ग्रह को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जान है सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी। अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे, जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरकंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। शकरकंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे, जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है

0: हाँ, ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और हाँ नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखे कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया? नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ कहल रही नी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आसपास कहूं भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले

0: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
0: डॉक्टर,

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एरी सुशीला, तेरो बालक ऐसो रो रहे हो है, भूखो है का?
2: हाँ, भूख ही लग रही होएगी।
1: तो याए सहद दे दे।
2: हाँ, तू 2 मिनट बैठ, में लेके आई।
3: मैं पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बेर बोली है कि 6 महीने को होने से पहले बालक है, माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
2: संगीता की भी तो बालक हुए हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
3: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है, वाने कही ना यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारियों से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे, खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे, स्तन और अंडा से कैंसर का भी खतरा ज्यादा हो गए। तो इसलिए अपने बालक के स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक के सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
4: यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

सुनो शारदा 90.8 FM। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
0: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
0: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: मुझे छेड़ना अच्छा लगता।
6: और क्या अच्छा लगता?
5: ये जो बातों ही बातों में मेरी आंखों के डीएम में स्लाइडिंग करती है ना, अच्छा लगता है।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
6: Beautiful songs, Inqilabi Ziddi from the movie Gandhi Talks. और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, vocals श्रेया घोषाल, lyrics कुमार। All new सुनो शारदा 90.8 FM, Inqilabi Ziddi।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: Hi, this is Sharmili Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
6: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। यह आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये शक्ति, स्थिरता व ज्ञान का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं।

आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को। सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: इस तरह सुपर हीरो जल रक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
1: वाओ, जल रक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
0: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
1: बहुत मजा आएगा।
2: हाय तारा।
1: ओह हाय चमन, आओ मेरे साथ फल खाओ, फिर हम खेलेंगे।
3: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता हूँ।
1: अरे चमन पानी वेस्ट कर रहा है, लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
2: अरे तारा ये क्या?
1: तारा नहीं, जल रक्षक तारा।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
1: हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
3: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
1: और नल या पाइप में केवल एक लीकेज से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
3: अरे बाबा रे,
1: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
3: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
1: पीने का पानी? चमन रुको, हाथ को खरी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
2: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
1: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है, कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
2: हैं?
1: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देते और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
0: अरे बाबा रे, तो फिर

0: बात तो ठीक है जल रक्षक तारा, पर पानी की जांच होगी कैसे?
1: चलो चलो अप्पा से पूछते हैं।
2: ओके
1: अप्पा।
3: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
2: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
3: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: पानी में गंदे हाथ या गंदे बर्तन?
1: नो नो नो नो,
2: समझ गया।
3: अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
1: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
4: कहीं पानी बर्बाद हो रहा है,
3: लगता है वहाँ जल रक्षकों की जरूरत है।
4: चलो।
0: तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो, आज से अभी से शुरू करो, खुद का पानी खुद निगरानी।
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर एक मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।